एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 और 30 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
3: ये है विविध भारती।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है, इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये संसार एक माया लोक है और इस लोक में आकर स्वयं प्रभु भी रचते हैं लीलाएं, स्वयं ही हरते हैं जीव के मन से माया मोह के बंधन और करते हैं बंधन मुक्त भी, किंतु उनकी माया का रस अनोखा है।

जरा सोचिए तो कौन होगा उस प्रभु से शक्तिशाली जिनके इशारे पर नाचती है ये दुनिया सारी, उस पर भोलापन ऐसा कि प्रसन्नता से दुनियावारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेंगे। आज सुनेंगे 224वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार

हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। दूसरी कड़ी आज सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 से 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 बजे से सुनिए समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, लेखन मिलिंद सबनिश का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुन सकते हैं पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश का पुनः प्रसारण। 11 बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार और 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे का समय है सुरीला सफर कार्यक्रम का और 2 बजे से पुनः प्रसारण होगा वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम का। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से आनंद लीजिए सदाबहार नकमे कार्यक्रम का। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनेंगे 3 बजे से। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए कहानी ज्वालामुखी। कहानी का लेखन और वाचन किया है निवेदिता श्रीवास्तव निवी ने, संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:00 से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पुरातत्व के तत्व ये झलके सुन सकते हैं 8:00 से हवा महल में, लेखन नाजनीन का, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

आपको एक बार फिर से बता दें, वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 बजे से। और ये कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, जिसमें आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम, श्री रामचरितमानस की 224वीं कड़ी सुनिए।

चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वायलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित विजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी,
1: डीके दाता,
2: हाँ, ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली
1: जी
2: वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियाँ आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा रहा कि
1: बहुत बड़ा योगदान है,
2: योगदान रहा
1: जी जी।
2: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी, बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि
1: जी,
2: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी उनके इंस्ट्रूमेंट में थी, वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पर।
1: पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया, किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से?
2: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
1: जी
2: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इसमें
1: जी।
2: अपने आप में ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, परिपूर्ण वाद्य है ये, और जिसने भी इसके साथ

0: का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो
1: जी
0: कोई तीसरी बात हो गई,
1: हाँ
0: विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे खत्म हो गए। वह बाजा आज भी चार तार के सिवा नहीं बजता है।
1: जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश।
0: एग्जैक्टली
1: exactly. जी जी
0: और जोग साहब ने चार तार पांच तार के साथ ही बजाया इसको, एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, पर बजाया उन्होंने चार ही तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे।
0: जी, तो जोग साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये, जितना साउथ इंडिया में है।
1: जी,
0: हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं, राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी जयरामन,
0: लालगुड़ी जयरामन।
1: जी, जी
0: इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं
1: समकालीन कलाकारों में, एल सुब्रमण्यम,
0: सुब्रमण्यम जी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल
1: जी,
0: हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
1: पंडित वी जी जोग साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल, जरूर सुनवाई।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

रामी धोबन फिल्म के इस गीत के साथ ही याद किया फिल्म निर्माता और संगीतकार हीरेन बोस को उनके पुण्यतिथि पर, करते हैं उन्हें नमन। और रामी धोबन फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में, राम मूर्ति ने इसे लिखा, हीरेन बोस का संगीत था। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हसरत जयपुरी के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आह फिल्म के इस गीत में शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे की।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा
2: आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, भूले बिसरे गीत।

0: बाराती फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे। तन्वी नकवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,

0: शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अफसाना फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, असद भोपाली के बोल, हुसनलाल भगतराम का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आंसू फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। कमर जलाल आबादी के बोल पंडित हुसनलाल भगत राम का संगीत। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। गौतम बुद्ध का कथन है, अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। तो ये था आज का सुविचार।

और अब आज का इतिहास। श्रोताओं, आज 19 जून है, तो आइए डालते हैं एक नज़र कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो विगत के वर्षों में 19 जून को ही घटित हुई थी। 1948 में आज ही के दिन यानी 19 जून को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 1991 में सोवियत संघ ने हंगरी को अपने कब्जे से आज़ाद किया था आज ही के दिन। 1999 में कोलोन जर्मनी में समूह 8 की शिखर बैठक प्रारंभ हुई थी और सन 2008 में आज ही के दिन उत्तराखंड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी व 380 मेगावाट की भैरोधारी परियोजना को स्थगित किया था।

अब आइए एक नज़र डालते हैं 19 जून को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1871 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी नोबेल पुरस्कार विजेता आजे नील्स बोर का। मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक व उपन्यासकार सलमान रश्दी का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन 1947 ईस्वी में। और 1970 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और सांसद राहुल गांधी का।

अब एक नज़र उन विभूतियों पर जिनका निधन आज ही के दिन यानी विगत के वर्षों में 19 जून को ही हो गया था। भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के

चिकित्सक व वैज्ञानिक सुभाष मुखोपाध्याय का निधन 1981 में हुआ था आज ही के दिन। नरेला वेणुमाधव जो कि भारतीय मिमिक्री कलाकार थे, इनका भी निधन हुआ था आज ही के दिन सन 2018 ईस्वी में। सन 2021 में आज ही के दिन निधन हुआ था भारतीय आईएएस अधिकारी गुरु प्रसाद मोहापात्रा का। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज हम संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मना रहे हैं और आज गुरु गोविंद जयंती भी है, आज पर तिथि। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास और अब कार्यक्रम में आगे हम नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर, लेकिन पहले हम सुनवा रहे हैं एक भक्ति रचना।

जय संतोषी माँ। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति रचना। कवि प्रदीप की रचना थी और संगीत दिया था सी अर्जुन ने। श्रोता आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। अब आइए नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

रोहिणी में नहीं बरसा पानी, अब तक 25% ही डाला गया धान का बिचड़ा। जिहा रोहतास जिले में मानसून की सुस्ती और मौसम की बेरुखी ने खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की खेती को प्रभावित कर दिया है। धान का बिचड़ा डालने के लिए कृषि परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले रोहिणी नक्षत्र, जो कि 25 मई से 8 जून तक रहता है, के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं हुई।

कैमूर के सरकारी स्कूलों में छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं के लिए सुरक्षित व भयमुक्त माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। श्रोता बता दें कि कैमूर के 1364 सरकारी स्कूलों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की पहल पर शुरू की जा रही इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसर में छात्राओं व शिक्षिकाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या लैंगिक भेदभाव की शिकायतों का त्वरित व प्रभावी निपटारा करना है।

मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए गुरुवार को दावत थाना परिसर में शांति समिति की बैठक सीओ सौरभ कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन मनीष कुमार पंजियारा ने किया। बैठक में जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

रोहतास जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने डीईओ एसएसए डीपीओ को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि विगत वर्षों में मस्तिष्क ज्वर के मामले पाए गए हैं। जरूरी जानकारी नहीं होने के कारण इससे प्रभावित बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है।

रोहतास डीएम के जनता दरबार में सुनी गई 8 शिकायतें। जी हाँ, जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने दैनिक साक्षात्कार में कुल 8 आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने अपनी शिकायतों से जुड़ी आवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपे। जिला प्रशासन ने हर आवेदन को संबंधित विभाग तक तुरंत भेजा, त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए गए।

कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास विक्रमगंज के धनगाई स्थित शैक्षणिक परिसर में आत्मा रोहतास के सहयोग से प्राकृतिक खेती जिला कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की उन्नत तकनीकों, इसके लाभ तथा खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों एवं जीविका समूह की महिलाओं ने भाग लिया।

तो ये थी संक्षिप्त जानकारी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। और अब एक नज़र मौसम पूर्वानुमान पर। रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। निकलेगी तेज धूप, गर्म हवा के साथ लू चलने की भी संभावना है और कहीं कहीं तेज हवा के साथ वर्षा की भी संभावना है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आगे हम नजर डालेंगे समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर, लेकिन पहले हम सुन रहे हैं कार्यक्रम में एक और गाना।

मुकेश व साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म से ये गीत। शैलेंद्र की रचना थी और शंकर जयकिशन की धुन। और अब नमस्ते रुदास कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर नजर डालते हैं समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो आज भी हमारे पास है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर। सभी अखबारों ने राज्य में जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी से संबंधित खबर प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान लिखता है, जमीन के सर्किल रेट ग्रामीण में 1.5 गुना और शहरी में 2 गुना बढ़े, तत्काल प्रभाव से लागू। इसी खबर को दैनिक जागरण लिखता है, महंगी हुई जमीन गांवों में 1.6 गुना तो शहरों में 2 गुना हुआ सर्किल रेट। अखबार लिखता है कि अब हर साल 5% स्वतः बढ़ेगा MVR और प्रत्येक 3 साल पर पुनरीक्षण। यह भी खबर दिया है कि महिलाओं को मिलेगी 0.5% की छूट और DM 10 और कमिश्नर 20 एकड़ तक जमीन का कर सकेंगे हस्तांतरण।

दैनिक भास्कर एक सचित्र समाचार छापा है जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने होमगार्ड जवानों की पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे हैं और सम्राट चौधरी के हवाले से अखबार लिखता है, अपराधी परेशान करे तो पुलिस को बताएं, न सुने तो हमें बताएं। और सीएम ने कहा, बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगी पुलिस दीदी।

हिंदुस्तान अपने मुखबिरस पर मोटे अक्षरों में ये खबर छापा है, लिखता है, अमेरिका और ईरान का समझौते पर हस्ताक्षर, ट्रंप ने लगाई मुहर, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमत।

प्रभात खबर की सुर्खी है, किसानों को अब मिलेगा अधिक मुआवजा। जी हां, राज्य सरकार नए सिरे से शहरी व ग्रामीण इलाकों के जमीनों के लिए MVR तय कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्तमान MVR का 1.6 गुना बढ़ाया गया है और सत्यदर्शी संजय बने राज्य के नए एडवोकेट जनरल। इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है।

अब एक नजर डालते हैं खेल समाचारों पर। महिला T20 विश्व कप में शेफाली वर्मा की फॉर्म वापसी से भारतीय टीम का बड़ा भरोसा। नीदरलैंड के खिलाफ 38 गेंदों पर खेली 55 रन की पारी। और FIH हॉकी प्रो लीग में भारत जीता, मनप्रीत बने सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी। अगले साल 10 मार्च से हो सकता है IPL। जी हां, भारतीय क्रिकेट बोर्ड देश के अधिकांश हिस्सों में मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचने के लिए IPL को अगले साल से 10 मार्च से 15 मई तक आयोजित करने पर विचार कर रहा है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

ये था हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। ये आकाशवाणी सासाराम है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हम कुछ ही पलों में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
6: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
7: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मंगी से साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी

0: और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
1: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम

0: योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। देशभक्ति कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं कर्मा फिल्म से ये देशभक्ति गीत।

मोहम्मद अजीज कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कर्मा फिल्म से ये देशभक्ति गीत। और इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है पत्र आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त लाल बहादुर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं आप सबकी पसंद पर साजन फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं फोटानी चौक नारायण एस्टेट से भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराजर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। नरहन एस्टेट से ही हमारे श्रोता हैं नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम आराध्या, विनीता मिश्रा और स्नेहलता जैन। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू और वी के सुरगनैया। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानु देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार ने भी इसी गाने को सुनना चाहा है। और ये हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा। नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। तो पेश है आप सबों की पसंद पर साजन फिल्म का ये गीत।

श्रोता जी समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर दो रास्ते फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है रान बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना से बाल करण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सास गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, ग्राम नहोना सासाराम से इसी गाने के लिए फरमाइशी पत्र भेजा है। हमारे श्रोता हैं भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। और ये हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, और आप सब हैं सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर दो रास्ते फिल्म का ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पसंद आपके कार्यक्रम में अब हम सुना रहे हैं नया दौर फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। साहिर की रचना है और ओपी नैयर का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं कलर बिहार से हमारे श्रोता मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकात परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, अजफर हामिद, तहमीना मशकूर, शम्मा परवीन और नाहिद अख्तर। सिविल कोर्ट सासाराम से हमारे श्रोता हैं मंटू सिंह छपरा वाले। और ये पत्र है नाजमंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। नूरमहल महसौल से हमारे श्रोता हैं हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। और आप सब हैं ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक। और ढोली साकरा से हमारे श्रोता हैं जयंत कुमार वैरागी। तो लीजिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं नया दौर फिल्म का ये गीत।

नए दौर फिल्म के इसी गाने को सुनना चाहते हैं। नेका गांव धर्मशाला से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल ने भी। और आप सब हैं जयमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल।

और पसंद आपकी कार्यक्रम के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर मेरा साया फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खां की रचना है और मदन मोहन का संगीत। सुनना चाहते हैं खमारिया बिलासपुर से हमारे श्रोता साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा। इसी गाने को सुनना चाहते हैं दिनारा से हमारे श्रोता जयराम सिंह और लोहार के नीम सासाराम से दिलनवाज अंसारी। घर सीमा से छोटीलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराम, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और पीएल यादव। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं मेरा साया फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहा बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर, पटना और छपरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होंगे महंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला, त्यागराजन SM बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। और BCA की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में रक्सौल की अक्षरा गुप्ता ने 126 गेंदों पर 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री वैष्णव पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का दौरा करेंगे।
1: श्री वैष्णव STPI में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे पाटलिपुत्र जंक्शन से छपरा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री छपरा रेलवे स्टेशन पर छपरा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरीघाट ओडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बाद में श्री वैष्णव मढ़ोड़ा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और 91वें निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना

0: जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क महंगे होंगे। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MVR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं MVR में भूमि की श्रेणी का भी नए सिरे से निर्धारण किया गया है। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में भूमि की 7 श्रेणियां जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्र में भूमि की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। समाचार कच्छ से राहुल कुमार।
0: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना सहित 11 जिलों में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी

0: समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
1: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना सहित 11 जिलों में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निवर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उदिता सिंह नालंदा की नई जिलाधिकारी होंगी। CY भोटिया जहानाबाद, दीपक कुमार मिश्रा रोहतास, सौरभ सुमन यादव पूर्वी चंपारण, अलंकृता पांडे भागलपुर और विक्रम वीरकर खगड़िया के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अंशुल कुमार को बांका, समीर सौरभ को गोपालगंज, नवीन कुमार को किशनगंज और कुमार गौरव को मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: इधर गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 13 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। विक्रम सिंह को सहरसा, उपेंद्र नाथ वर्मा को औरंगाबाद, भानु प्रताप सिंह को खगड़िया और शुभांक मिश्रा को वैशाली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कुमार गौतम पश्चिम चंपारण के, अमितेश कुमार बांका के, शौर्य सुमन पूर्णिया के, हिमांशु शेखपुरा के और राजेश कुमार बघा पुलिस जिला के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा शिखर चौधरी को कैमूर, परिचय कुमार को कटिहार, कोटा किरण कुमार को जहानाबाद और शैलेंद्र सिंह को शिवहर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राज्य सरकार किसानों और सहकारी संघों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बिहार राज्य विपणन सहकारी संघ का गठन करेगी। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिस्कोमान की तर्ज पर गठित होने वाले इस संघ से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, साथ ही कृषि और सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि संघ की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए तय की गई है। मंत्री ने बताया कि संघ के निदेशक मंडल में 17 सदस्य होंगे। बियाडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 30 औद्योगिक इकाइयों के लिए 26.59 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इन इकाइयों से राज्य में 627 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि इन औद्योगिक इकाइयों से 3000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी 238 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 114 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 47 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से आज से पटना के पामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न जिलों के आम उत्पादक किसान शामिल होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है
6: 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612।

0: 2225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पिछले 6 दिनों से मॉनसून निष्क्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। इधर विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पटना, गया और भागलपुर समेत 10 जिलों में भी तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है।
3: दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा, कैमूर, शेखपुरा और बक्सर में लू जैसी स्थिति रही। भागलपुर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में पूर्वी चंपारण के रक्सौल की 19 वर्षीय बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 126 गेंदों पर नवाद 306 रन बनाए। अपनी रिकॉर्ड पारी में अक्षरा ने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की इरा गुप्ता के बाद यह महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक है। अक्षरा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत टीम ए ने 40 ओवर में 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में टीम सी 121 रन पर ही सिमट गई। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब बिना इंटर्नशिप के छात्रों को स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। बिहार लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए 120 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में बेगूसराय जिले के मध्य विद्यालय मोहनपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय को 27वां स्थान मिला है। विद्यालय को यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण, पौधारोपण तथा छात्र सहभागिता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिली है। समस्तीपुर से पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मूसापुर और धर्मपुर मोहल्ले में बंधक बनाकर रखे गए 105 युवक युवतियों को पुलिस ने मुक्त कराया। इन सभी पर चेन मार्केटिंग के जरिए नए लोगों को जोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस नेटवर्क के सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना स्थित निगरानी की अदालत ने पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह, उनकी पत्नी अल्पना सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है। जब्त की जाने वाली संपत्ति का बाजार मूल्य 1,14,00,000 रुपए से अधिक है। अवधेश कुमार सिंह को सीबीआई ने वर्ष 2009 में दिल्ली के एक होटल से 2,50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था। बक्सर जिले के सरस्ती गांव के पास ठोड़ा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेढ़ुआ गांव में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर

0: थाना क्षेत्र अंतर्गत नामचीन बसेरा बड़ चौराहे के पास एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक दंपति सहित तीन लोगों की मौत हो गई। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में से एक सुनील कुमार अररिया के पूर्व सांसद रामजी दास ऋषि का पुत्र है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है मध्य पूर्व जंग, अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दैनिक जागरण की सुर्खी है महंगी हुई जमीन, गांव में 1.6 गुना तो शहरों में 2 गुना हुआ सर्किल रेट। दैनिक भास्कर ने लिखा है 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, 11 जिलों में नए टीएम बने, 12 जिलों के एसपी भी बदले गए। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है एएन कॉलेज समेत 10 कॉलेजों में अब रात 8 बजे तक होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं सूबे में हर हाल में कायम रहेगा कानून का राज, सम्राट चौधरी। आज अखबार लिखता है बिहार के नए महाधिवक्ता बने एसटी संजय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर, पटना और छपरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होंगे महंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला, त्यागराजन एसएम बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। और बीसीए की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में रक्सौल की अक्षरा गुप्ता ने 126 गेंदों पर नाबाद 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। सुबह 10 हिंदी में समाचार सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले, और सुबह 10:05 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा खेल खिलाड़ी।

सुबह 10:30 बजे से आप सुनेंगे लोकमाधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत और 10:45 पर कार्यक्रम होगा रसधार। इसमें आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स और दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम

हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन, और शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। इसमें आज बहनों से बातें होंगी स्वस्थ जीवन का आधार योग विषय पर। हर घर जल योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा पर भी कुछ बातें होंगी। संध्या 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। इसमें आज चर्चा होगी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य विषय पर, और एक वार्ता भी सुनवाई जाएगी। विषय होगा चारित्रिक मूल्यों का विकास। वार्ताकार होंगे रमाशीष सिंह। एक जानकारी में जानकारी लीजिएगा, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत, और संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:30 प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से, और शाम 7:50 से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 9:15 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 कार्यक्रम होगा बंदगी, इसमें आप सुनेंगे नात, और रात्रि 9:30 से हम रिले करेंगे पटना केंद्र से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण। रात्रि 10:00 रसरंग कार्यक्रम में सुनिएगा हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 होगा कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार। 11:05 पर हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और 11:10 पर रात्रि आज की सभा समाप्त होगी। तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे चेहरे की, और चेहरे से संबंधित

गीत भी सुनवाएंगे। श्रद्धा कहते हैं कि दिल में जो छुपा होता है वो चेहरे पर दिख ही जाता है। चेहरा कभी खुशी से खिल उठता है तो कभी गम में मुरझा जाता है। यूं कहें कि चेहरा बिना कुछ बोले भी सब कुछ बयां कर देता है।

यह श्रोताओं, दिल की बात बता ही देता है असली नकली चेहरा। बहरहाल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे असली नकली फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। श्रोता, वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसानी चेहरे पर 43 यानी कि 43 मांसपेशियां होती है, जो मिलकर हजारों तरह के भाव बना सकती हैं। श्रोता, यदि हम आपसे कहें कि सबसे खूबसूरत भाव कौन सा है, तो आप निसंदेह कह सकते हैं कि वह है एक सच्ची मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो किसी रोते हुए को भी हंसा दे। वैसे कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो पेश है किशोरदा की आवाज में ये सदाबहार।

श्रोताओ, किसी किसी चेहरे में तो जादुई आकर्षण होता है जो बिना डोर अपनी ओर खींच लेता है।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म का गीत। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं, चेहरे को खूबसूरत दिखाने के लिए लोग तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। आज तो चेहरे की सर्जरी भी करवा रहे हैं। श्रोताओं, सच कहे तो असली खूबसूरती दिल में होती है। तो दिल को देखिए, चेहरा आपको कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे सच्चा झूठा फिल्म का गीत। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो श्रोताओं, दिल से सुंदर बनिए, चेहरे की सुंदरता तो सेकेंडरी होनी चाहिए। और अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी देर में हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहां से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहां तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृग्या के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।
1: का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर एम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव,
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिन भर। आज के फनकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।

0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मंगीसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे योगा की पीटीसी के व्याख्याता दीपक कुमार मिश्रा के पास और उनसे हम जानेंगे योगा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरों की सुर्खियों से। मेसी हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज। उरुग्वे के खिलाफ भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी। इकाना में गिल और किशन का शतकीय तूफान। बल्लेबाजों के बाद सिंधु के कमाल से भारत ए टीम फाइनल में। विंबलडन से पहले युगल मैच हारी सेरेना। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत। ब्रिटेन का दौरा करेगी जूनियर महिला हॉकी टीम। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। मेसी हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज लियोनेल मेसी ने अपने आखिरी विश्व कप के पहले मैच में 2 उपलब्धियां हासिल कर ली। यह विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज 38 साल 357 दिन खिलाड़ी बन गए हैं। यह विश्व कप में उनकी पहली हैट्रिक है। इसके दम पर गत चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप चरण के पहले मैच में अल्जीरिया को 3-0 से पराजित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मेसी के नाम विश्व कप में सबसे युवा गोल स्कोर 18 साल 2006 होने का रिकॉर्ड भी है। 20 साल पहले मेसी ने अर्जेंटीना की ओर से पहला विश्व कप मैच खेला था, उसमें भी उन्होंने गोल किया था। बुधवार को मैदान पर उतरते ही छठा विश्व कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, साथ ही 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। अब मेसी के 16 विश्व कप के गोल हो गए, जिससे उन्होंने मिरोस्लो क्लोस के सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रिकॉर्ड ये भी है, लियोनेल मेसी और रोनाल्डो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 विश्व कप में गोल किए। मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, उससे आगे सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और वद अल मुतावा हैं। उन्होंने अपने कैरियर की 61वीं और अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए 11वीं हैट्रिक लगाई। उरुग्वे के खिलाफ भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी। सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम अब नेशन कप के अपने आखिरी लीग मैच में बुधवार को उरुग्वे से खेलेगी। भारतीय टीम पुल ए में 2 मैचों में 6 अंक के साथ शीर्ष पर है और अंतिम 4 में पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 4 से चित किया। ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को 3 की टी20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 4 से हरा दिया। बल्लेबाज के बाद सिंधु के कमाल से भारत ए टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और भारत की सीनियर टीम ने अफगानिस्तान को 170 से हरा दिया। इंडिया ने 402 रन बनाए और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने मात्र 232 रन बनाए। विंबलडन से पहले युगल मैच हारी सेरेना। विंबलडन में वापसी से पहले सेरेना विलियम्स वर्लिन ओपन टेनिस में युगल वर्ग के पहले मैच में हार गई। सेरेना और कैरोलिना मचोवा की जोड़ी की जियोलिना ओल्सोवा और फोरेन लाउटफिके ने 6-4, 6-4 से हराया। सेरेना ने अमेरिकी ओपन 2022 के बाद पहली बार पिछले सप्ताह क्विंस क्लब पर वापसी की थी, जहां उन्होंने पहला मुकाबला जीता। अपनी जोड़ीदार विक्टोरिया एम्बोके के चोटिल होने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। 44 वर्ष की सेरेना अपनी बड़ी बहन वीनस के साथ विंबलडन महिला युगल खेलेंगी, जिन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश मिला है। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बुधवार को महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में एकतरफा अंदाज में 9 से रन दिया। ब्रिटेन का दौरा करेगी जूनियर महिला हॉकी टीम। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन का दौरा करके 7 मैच खेलेंगी। भारतीय टीम इंग्लैंड अंडर 21, अमेरिका अंडर 21 और बेल्जियम अंडर 21 टीमों के खिलाफ खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के टीम वाइट को कोच बनाए जाने के बाद भारतीय जूनियर टीम का यह पहला बड़ा दौरा होगा। भारतीय टीम एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड की सीनियर टीम के खिलाफ 5 और 6 जुलाई को खेलेंगी। इसके बाद इंग्लैंड में अमेरिका की अंडर 21 टीम के खिलाफ 8 और 11 जुलाई को, इंग्लैंड अंडर 20 टीम के खिलाफ 9 और 12 जुलाई को और बेल्जियम अंडर 21 टीम के खिलाफ 14 जुलाई को खेलेंगी। ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में 36 साल बाद विजय। तो दोस्तों, यह थी खेल गतिविधियों पर आधारित खबरें। आप सभी जानते हैं कि 21 जून को विश्व योगा

0: दिवस मनाया जाता है। तो क्यों ना हम आज योगा पर बातें करें। तो आइए योगा पर बातें करने के लिए आपको लिए चलते हैं पीटीईसी के व्याख्याता दीपक कुमार मिश्रा जी के पास, और उनसे हम जानेंगे योग के बारे में। दीपक कुमार मिश्रा जी, आकाशवाणी सासाराम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार। और हम चाहेंगे कि योग के माध्यम से आप सभी स्वस्थ रहें और आप सबको ऊर्जा मिले, यही हमारी कामना है।
0: दीपक जी, आप व्याख्याता हैं, योग आप काफ़ी दिनों से लोगों को कराते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि योग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है।
1: योग शब्द का वास्तविक अर्थ यही है, योग शब्द जो है युज धातु से बना हुआ एक शब्द है। जो योग होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ना, या खुद को अपने आप से अपने आप को जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, और अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए ऊर्जा से जोड़ना। तो हमारे ऊर्जा के स्रोत सूर्य भगवान भी हैं, और हमारे योग में सूर्य नमस्कार भी किए जाते हैं। तो हर प्रकार के योग हैं, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हम केवल सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करें तो हम सभी रोगों से बचाव कर सकते हैं।
0: आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि लोग बीमारियों से गजब जूझ रहे हैं, हर तरह की परेशानी, हड्डी की परेशानी, किडनी की परेशानी, लीवर की परेशानी, तो इन सबों में योग उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा?
1: योग इतना फ़ायदेमंद होगा, कितना होगा ये नहीं, लेकिन योग एक वरदान की तरह कार्य करेगा। हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, हड्डी की बीमारी है तो हड्डी के विशेषज्ञ के पास हम लोग जाते हैं, सांसों की बीमारी हो गई तो हम सांसों के विशेषज्ञ के पास जाते हैं, इसी तरह अन्य बीमारियों के लिए हम बीमारियों से संबंधित डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन सभी बीमारियों का एक जगह अगर इलाज हो सकता है तो वह है योग। योग आसन में प्राणायाम के साथ अगर हम आसनों को करेंगे तो प्राणायाम के साथ किया गया आसन अधिक लाभ देता है, यानी कि इंटीग्रेटेड योग बन जाता है और हमारे सभी रोगों को दूर करता है, हमें स्वस्थ बनाता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। तो एक एक करके हम आपसे चाहेंगे कि वो प्रश्न जाने, उसका उत्तर जाने, ताकि श्रोताओं को भी फायदा हो। आप अनुलोम विलोम कराते हैं, कैसे कराते हैं और क्या महत्व है इसका?
1: अनुलोम विलोम की बात करें तो अनुलोम विलोम सभी प्राणायामों का राजा प्राणायाम बताया जाता है। एक अनुलोम विलोम मात्र प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो सभी हमारे 72,72,10,201 नस नाड़ियों को खोलता है, ब्लॉकेज को दूर करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम याददाश्त को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी सभी प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम को खास करके दूर करता है। यहाँ तक कि हम देखे हैं कि अनुलोम विलोम करने वाले व्यक्ति अगर नियमित 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को यदि केवल अनुलोम विलोम करे तो उसकी पैरालिसिस तक की बीमारी ठीक हो जाती है। तो अनुलोम विलोम करने का सहज तरीका है कि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक के छिद्र को बंद करें, बाएं से श्वास को खींचें और बाएं को हम मध्यम और अनामिका से बंद करके अंगूठे को हटा दें दाहिने छिद्र से और इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ें, फिर दाहिने से ही श्वास को भरें और बाएं से श्वास को छोड़ दें। तो यह प्रकार बार बार करना है और लगातार 5 मिनट से कम कभी नहीं करना है। अगर 5 मिनट से कम करते हैं तो सिर भारी हो जाता है, अगर यदि 5 मिनट पूरा करते हैं तो बात पीत कफ तीनों संतुलित हो जाते हैं।
0: दीपक जी, लोग अक्सर पूछते हैं कि योग में तो इतने सारे आसन हैं, सर ना तो हमारे पास समय है, ना उतने आसन हम करने के शायद अभी लायक हैं, लोग पैर को उठा करके गर्दन में डाल लेते हैं पीछे की ओर, तो ऐसा कुछ बताइए कि जो आम हो, साधारण व्यक्ति भी कर सके, मोटा व्यक्ति भी कर सके, पतला व्यक्ति भी कर सके, बूढ़ा भी करे, जवान और बच्चा भी करे, वो कौन कौन आसन होते हैं हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
1: आसन तो हैं, आसनों को करने के लिए हमें थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए योग के द्वारा बहुत ही सहज तरीके हैं। जैसे में हम हाथों की उंगलियों को मोड़ें और सीधा करें, अपने हाथों को मोड़ें और सीधा करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। सिर्फ हाथ पैर हिलाना है, उसके साथ हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रख सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब श्वासों को लंबा लेना और श्वासों को छोड़ना। यदि हम केवल

0: ही करें और हाथ पैर को ऊपर नीचे करें, उंगलियों को सीधा करें और टेढ़ा करें, गर्दन को गोल गोल घुमा लें, पैरों को जितने भी ज्वाइंट हैं सभी ज्वाइंट को हम गोल गोल घुमा लें, सभी ज्वाइंट को हिला लें। लेकिन अगर लंबा लंबा श्वासों के साथ ये सब हम करते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम ऐसे बिना श्वास के चाहे हम जितना भी आसन करें, जितना भी हम हाथ पैर हिलाएं, अगर बिना श्वास के कर रहे हैं, लंबी लंबी श्वासों को नहीं ले रहे हैं, तो कोई भी आसन करने का ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा।
1: बहुत सही आपने कहा। एक और है दीपक जी कि लोगों को मैक्सिमम खास करके मतलब बुद्धिजीवी कहिए या लगभग कब्ज का प्रॉब्लम है, तो कब्ज के लिए कौन सा आपके पास आसन है जिसको अगर प्रतिदिन आदमी करे तो वो कब्ज ठीक हो जाए?
0: कब्ज के लिए सबसे बढ़िया है कपालभाति, जिसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में श्वासों को नाक से छोड़ते हैं, जैसे तो इस प्रकार से हम कपालभाति क्रिया करते हैं। जैसे कपालभाति जब हम करते हैं तो श्वास को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर अपने आप चला जाता है, यही कपालभाति है। इसके बाद मंडूकासन आते हैं। मंडूकासन जो वज्रासन में बैठ करके पैर को पीछे की ओर मोड़ते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं, जैसे नमाज के लिए बैठा जाता है वैसे ही हम बैठ जाते हैं। फिर अपने मुट्ठियों को बंद करके नाभि के बीचों बीच रखते हैं और पेट को अंदर की ओर दबा करके हम श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं और सीना जंघाओं से सट जाता है और सिर सीधा होता है, तो इसे बोलते हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन करने से हर प्रकार के कब्ज की बीमारियां, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी और आंतों की जो गांठें होती हैं, आंतों की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं इस प्रकार करने से।
1: दीपक जी मैं क्या कहूँ, शायद आप विश्वास करें या ना करें, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। लग रहा है कि ख़त्म ही ना हो, लेकिन समय आप समझते हैं हम लोगों के पास समस्या है। गाना सुनना पसंद करते हैं आप?
0: जी बिल्कुल।
1: तो इससे फ़ायदा यह होगा कि थोड़ा मनोरंजन आपका भी मैं चाहता हूँ कि करा दूँ और अपने श्रोताओं का भी करा दूँ। तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे, मैं वो गाना आपको सुनाता हूँ।
0: एक फिल्म तो का नाम तो नहीं पता है, लेकिन एक गाना है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: तो लीजिए आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनाते हैं, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना।

0: दीपक जी, मैंने आपके पसंद का गाना आपको भी सुना दिया और अपने श्रोताओं को भी सुना दिया। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और समस्या अभी फिलहाल आ रही है कि बच्चों की हाइट कम हो रही है या सबकी हाइट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो क्या योगा में ऐसा भी कुछ है कि बच्चों की हाइट को बढ़ाया जा सके?
1: जी बिल्कुल, योग से हम बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल 100% बढ़ा सकते हैं ताड़ासन के द्वारा। अच्छा। ताड़ासन करने की प्रक्रिया है कि खड़े हो जाएं, सीधे खड़े होकर के अपने हाथों को ऊपर करके और क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद इसको हम हथेली को आकाश की ओर कर देते हैं और हथेली को पूरा सीधा करके और हम एड़ी को उठाते हुए पंजे पे खड़े हो जाते हैं और शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये ताड़ासन हो जाता है और ये ताड़ासन यदि रोज़ 10 से 15 बार किया जाए तो हाइट को बढ़ाया जा सकता है।
0: बहुत बहुत अच्छा आपने कहा। अगर सचमुच आप लोग सुन रहे हैं तो इस चीज़ को अपनाइए, क्योंकि हाइट अच्छी होना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नियुक्तियाँ हैं जिसमें आप अगर हाइट कम है तो छट जाएंगे। दीपक जी, एक अगला प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, बहुत सारे लोगों को आजकल जो तनाव भरी ज़िंदगी है उसके लिए कौन सा व्यायाम है?
1: जी, माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिस प्राणायाम का नाम अभी हमने चर्चा में लाया था, जिसका नाम अनुलोम विलोम है। हाँ, अनुलोम विलोम ही प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हम माइग्रेन पेन को भी ठीक कर सकते हैं और दिमाग की सभी नसों को खोल सकते हैं और याददाश्त को भी बढ़ा सकते हैं, पागलपन भी अनुलोम विलोम से दूर होते हैं।
0: एक योगा मैं भी करता हूँ, उसका नाम शायद भ्रामरी है, तो जब मन बहुत अशांत हो जाता है या क्रोधित होता है उस समय उसको करने से मुझे शांति मिलती है, क्या यह सही है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं?
1: जी बहुत अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही फायदा पहुंचाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से कान अगर बंद हैं तो भी खुल जाते हैं, आँख की रोशनी में भी लाभ मिलता है और हम जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भौंरों की तरह उसमें गुंजन करते हैं। गुंजन करने के बाद जब जितने वाइब्रेशन होते हैं तो हमारे नसें जो हैं दिमाग की सभी खुल जाती हैं और बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह ही फायदा भ्रामरी पहुंचाता है।
0: मैं चाहूँगा कि आप भ्रामरी कैसे करते हैं ये हमारे श्रोता को बता दें।
1: भ्रामरी करने का तरीका, अंगूठे से हम अपने कान को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली को हम और मध्यमा उंगली को आँखों पे ऐसे रख लेते हैं और थोड़ी सी हम नाक पे अनामिका उंगली रख करके नाक को बिल्कुल हल्का दबाते हैं, सांस को पूरा भरेंगे और सांस भर करके नाक से ओम उच्चारण करेंगे, मुंह बंद रखेंगे और दांत बिल्कुल सटा हुआ रहेगा और इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार

अवश्य करें, इससे बहुत फायदा होता है और मानसिक रूप से हम इससे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम करके मानसिक रोग में। तो इस प्रकार करते हैं, सांस भर के।

0: जो जितना सांस रहता है उतना सांस को हमें नाक से ओम करके ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद आँखों को तुरंत नहीं खोलना है, एक मिनट दो मिनट सांसों को धीरे धीरे भरना है, छोड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे हाथ गर्म करके, हाथ को रगड़ते हुए, जब हाथ को रगड़ के गर्म कर लें तब आँखों को सहलाते हुए धीरे धीरे आँख को खोलना है।
1: दीपक जी, मैंने पहले भी कहा कि समय की बहुत पाबंदी होती है हम लोगों के पास, और हमारी बातें अभी ख़त्म हुई नहीं है। तो चलते चलते योग दिवस के अवसर पर लोगों को आप संदेश दें और लोगों को यह बताएं कि योगा कितना ज़रूरी है और कौन कौन से योगा किया जा सकता है।
0: ये योग दिवस पर हम यही कहेंगे कि योग जरूर करें, क्योंकि योग से दूर रहने का मतलब है कि रोगों से ग्रसित रहना, और जो भी हम कमाई करते हैं वह दवाई में जाना। तो यह सबसे बचने के लिए योग दिवस पर ही नहीं अपितु प्रतिदिन योग करें और निरोग रहें।
1: मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को बता दें कि इतने पहले भी ये प्रश्न किया था कि किस किस तरह के योग हम करें, क्योंकि हमारे पास समय भी थोड़ा कम है।
0: देखिए, मुख्य रूप से सांसों के साथ सूक्ष्म व्यायाम करें, ताड़ासन करें, गौमुखासन करें, पश्चिमोत्तानासन करें, ऊर्ध्वहस्तासन करें, पादहस्तासन करें, कोणासन, त्रिकोणासन इत्यादि आप करें, जिससे कि सभी प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। मैं एक अंत में एक बात और सभी को बताना चाहूँगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और सूर्य नमस्कार सभी लोग अवश्य किया करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और श्रोताओं, आप भी सुन लें, 21 जून को प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। आप उस दिन से कम शुरुआत कीजिए ताकि योग करें, स्वस्थ रहें, जिंदगी भर मस्त रहें। और दीपक जी भी कुछ कहते हैं, दीपक जी आप भी कहिए और उसके बाद
0: करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। संकलन एवं स्वर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। आरंभ में लीजिए सुनिए ये निर्गुण। गायक कलाकार हैं मदन राय।

मदन राय के स्वर में आप सुन रहे थे ये निर्गुण गीत। गणेश दत्त किरण की रचना थी और संगीत दिया था भरत शर्मा ब्यास ने। लोकमाधुरी कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं मुन्ना सिंह के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

सुनील मगवार की आवाज में आप सुन रहे थे शिवाधार जोगारी की ये रचना। और अब रसधार कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं तुलसीराज के स्वर में अंगद चौहान की ये रचना, बोल है प्रीत का धागा नाजुक होला।

रसदार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम से रचनाएं। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कुछ बोला में विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7-8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिज्वी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये सके।

0: दिल अपना जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार हैं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।
3: नद

मॉडर्न नॉन फिल्मी गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा,

0: रंग तरंग,
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
3: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस, अधोरीघाट औनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8 लाख

0: 75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से सजा।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से,

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है, और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार है, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियां आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज मे को मेरे पापा को सबसे के सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है, इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया। ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है। कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियानी की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपाल दास नीरज, मम्मी वहां पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी, और इतनी जबरदस्त फैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं, और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं। परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं? प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं।

है ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफी की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत, हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के जमाने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया, नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिर लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखनी के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि वो नीरज, गोपाल दास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा नीरज, लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने। बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां जवां हमारी ना समझा यहां कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरू के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवाब आगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया। लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव वर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया, बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए, मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र

दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैली, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम पंकज, केदार शर्मा वर्मा, मलिक अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है, परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफर का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं, कभी और किसी दिन सुनाएंगे। पर आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, आज्ञा दीजिए। शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हो तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो।

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर रेल मंत्री अब से कुछ देर बाद छपरा से आनंद विहार के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना के चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यहां जिगजैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की यह परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MBR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MBR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें।

0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्यान विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर उष्ण लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सेंट्रल रेल इत्तलात नशरियात और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर अश्विनी वैष्णव ने पटना वाके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से मुंसलिक कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और सरमायाकारी के तवसुत से नए भारत की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाकर बिहार तरक्की याफ्ता रियासत की तामीर की समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इधर वजीर रेल अब से कुछ देर बाद छपरा से आनंद विहार के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे बिहार समेत पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में महकमा शहरी तरक्कियात और रहाइश के 157 मंसूबों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्टों को प्रोग्राम में शामिल किया गया है। पटना के मारूफ प्रोजेक्टों में मीठापुर में 26,000 मुरब्बा फीट हलका में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लॉन्च का भी इफ्तिताह हुआ है। वज़ीराला ने दीघा से सभ्यता द्वार तक तरक्की पजीर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। यहाँ जिग जैग पार्क बनाया गया है। महकमा शहरी तरक्यात के ये प्रोजेक्ट पटना शहर को नई शक्ल देने की समत में अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और महकमा शहरी तरक्यात और रहायश के वजीर नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने एक दहाई के बाद देही और शहरी इलाकों में कम अज़ कम कीमत रजिस्ट्री MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। महकमा रजिस्ट्रेशन के जरिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक देही इलाकों में ये शरह औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी इलाकों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से ज़मीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प फीस भी महंगी होगी। नए निज़ाम के तहत अब हर साल MVR में खुद ही 5% का इजाफा होगा और हर 3 साल पर इसका जायज़ा लिया जाएगा। महकमा के वजीर मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से ज़मीन एक्वायर के मामलों में किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ख़वातीन के नाम इमलाक रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इतवार को होने वाले कौमी अहलियती नीज दाखिला इम्तहान ग्रेजुएट NEET UG के दोबारा इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने वाजे किया है कि सभी सरकारी व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ इसके तस्दीक शुदा नंबर 9178279802827 के तवसुत से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से कबल नीले तस्दीक शुदा निशान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम की जांच कर लें। वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा आम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कसीर तादाद में आम पैदा करने वाले किसान, बागीचा के माहिरीन और आम ताजिर मौजूद थे। प्रोग्राम में

0: आम की मुख्तलिफ किस्मों की नुमाइश की गई है, जहां किसानों और आम के शायकीन को अलग अलग किस्मों के आमों की मालूमात दी जा रही है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए रियासती हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है। रियासत में आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मशरक़ और जनूब मशरक़ में वाक़ अजला के कुछ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। रियासत के जनूबी हिस्सों में कई मकामात पर शदीद हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है: उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल या सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 तक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लीजिए: www.allahabadhighcourt.in। और इधर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है: उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर सकते हैं: www.ssc.gov.in। और इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4,500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट नोट कर सकते हैं: www.centralbank.in पर। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया

0: या उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से क्रीमिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी
3: में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा

0: कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही ना हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2000

0: 400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से, मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार।

फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज़ है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

रहा था, जान गई रहा था। साथ यथ यथ साथ यथ यथ साथ यथ यथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7-8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है।

0: करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं। हाँ
0: और कटहल का अचार भी
1: हाँ
0: डाला जाता है। खाने के अलावा जो अलग
1: जी
0: स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान
1: उसको
0: रखना पड़ता है।
1: हाँ उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम बीगा बीगा, दिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह की सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है। सुनवाते हैं आपको ये गीत। दम दम।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना जी।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: बस
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे ही रहती हूँ
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है,
1: जी मैम जी।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: मैम मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी। मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे साजन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।
2: बहुत

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है?
1: जी अभी हाँ छोड़ा है मैंने। अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है।
1: जी 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम

0: जाऊँ तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। वो अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
1: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी
0: हाँ
1: उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों
0: हाँ
1: में जो संस्कार पड़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब अब खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
0: हाँ पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो, घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
1: इसके
0: अभी
1: अलावा और
0: गिटार सीखने लगी हूँ।
1: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
0: जी अभी स्टार्ट किया है, हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
1: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने
0: हाँ
1: आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
0: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
1: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
1: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
1: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक खैरवार बात कर रही
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से
1: हूँ।
0: कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही से है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं। साइकिल
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम। मैम
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: आपने
1: साथ में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव सीवर के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो सीवर है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैं मुझे तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना, और मतलब सॉन्ग को गाना, मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाणे है।
0: प्रतिभा रहाणे जी, आप कहाँ रहती हैं, किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योगाश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं,
1: हाँ,
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह
1: और
0: की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प, पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ,
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी।
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास, प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है,
1: हाँ
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और
1: हाँ
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670-288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा

प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने

निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पर...

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग

स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहां बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी मां नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में मां की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर मां मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी

रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहां हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

सुबह उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन मिल गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है, शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती।

मैं बात करता हूं, पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हां पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूं। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

0: अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।
1: निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बाघड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी।

सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबरजात बड़ी बाधा इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से ये धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ ना उखाड़ गई। जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तने चारों खाने चित कर

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 719 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार

0: मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया के किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी देर में वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे श्रोता आनंद लेंगे बेहतरीन भक्ति गीतों का। शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6 आप सुनेंगे भरत सिंह भारती की आवाज़ में एक बेहतरीन भोजपुरी लोकगीत।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। इसके अंतर्गत वार्ता में आप सुनेंगे चारित्रिक मूल्यों का विकास से वार्ताकार होंगे रामाशीष सिंह। शाम 6:40 पर आप लेंगे आनंद बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत में।

शाम 7:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से। इसमें हम आपको कैमूर और रोहतास जिले की स्थानीय गतिविधियों के बारे में बताएंगे। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बंदगी।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। रात्रि 10 आप लेंगे आनंद हिंदी एल्बम गानों का कार्यक्रम होगा रसरंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 आप सुनेंगे हिंदी समाचार और उसके तुरंत बाद यानी 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

श्रोताओं, अभी हम संक्षिप्त जानकारी दे रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीत। कार्यक्रम है वंदन। कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत हमने लिया है मानसी यादव की आवाज़ में।

बृजराज सिंह लखा की आवाज़ में अभी आपने सुना यह भक्ति गीत है। अब आइए सुनते हैं एक संदेश, संदेश के बाद आप सुनेंगे वंदन कार्यक्रम के शेष भक्ति गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत अनूप जलोटा और गीत

अनूप जलोटा और गीतल की आवाज़ों में अभी आपने सुना यह बेहतरीन भक्ति गीत है। इसी के साथ संपन्न होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम में सभी सखियों सहेलियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी सखी चंदा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज के इस आधुनिक युग में जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, अधिक से अधिक और अधिक पैसा कमाने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, और इसी चक्कर में इंसान अपने आप को खो बैठता है, अपने आप को खुश भी नहीं रख पाता। सखियों, इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए पर मन की शांति अगर नहीं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। मानसिक तनाव हमारे जीने का सुकून, हमारे चेहरे की खुशी छीन सी लेती है। खुद के लिए हम समय भी नहीं निकाल पाते और अनेक बीमारियों को बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जो इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकता है। पता है सखियों, योग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वो यह है कि इस योग को हर आयु का व्यक्ति कर सकता है। प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकालकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को भी संतुलित रखने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। नियमित योग से कई सारी बीमारियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में योग का प्रचलन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। योग केवल शरीर को मोड़ने या घुमाने और सांस लेने तक ही सीमित नहीं होती। यह एक ऐसी तकनीक है योग जो आपको उस अवस्था में ले जाती है जहां आप वास्तविकता को अपने वास्तविक स्वरूप में देखते हैं और अनुभव करते हैं। योग के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि हठ योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, ज्ञान योग वगैरह वगैरह। कई ऐसी योग साधना है जिसे हम अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों को योग के महत्व और उसके स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक कराना है। सखियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं सखियों, इसे बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थानों पर भी योग शिविर तथा सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। सखियों, योग हमारे जीवन को बदल देता है और आपके दृष्टिकोण को ऐसे व्यापक बनाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि सही मायने में स्वस्थ जीवन का आहार योग ही है। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारी अगर हमारे अंदर बीमारियां आती हैं या फिर हमारा मन चिंतित रहता है, मन अगर चिड़चिड़ा हो, तो आप एक बार एक हफ्ते आप ज़रूर प्रयास कीजिए कि आप योग को अपना कर देखिए। सही मायने में सखियों, आपको काफ़ी लाभ भी होगा और आप अंदर से खुश महसूस करेंगी, अपनी खुशी को जाहिर कर पाएंगी और एक कहते हैं कि अंदर से एक स्फूर्ति आती है, सही ढंग से रक्त संचार सही होता है। कई तरह की बीमारियां जैसे कि हृदय, ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर होता है, हमारा शरीर लचीला होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि योग हमारे संपूर्ण शरीर को एक्टिव करता है। सखियों, योग के सभी प्रकारों का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को संतुलित विकास करना

होता है। योग की खास बात यह भी है कि हम अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार किसी भी योग पद्धति को अपना सकते हैं। लेकिन सखियों, अपनाने के बाद अगर हम चाहें तो, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये भी ज़रूरी है कि अगर हम मेंटेन रखें, जैसे कि हमारा खान पान हुआ और योग रोज़ाना सुबह हो, आप शाम में भी कर सकती हैं, तो आप अपने हिसाब से सही ढंग से अगर अपने लिए 1 घंटे का भी वक्त निकालती हैं, तो आपको योग के माध्यम से आपको काफ़ी सुधार होगा, आपको अच्छा फील होगा। तो आप ज़रूर योग को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। और इसी के साथ सखियों, एक गीत का भी समय हो चला है, तो आइए सुनते हैं हम सब मिलकर ये गीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और आइए अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की। सखियों, आए दिन खबरें सुनने को मिलती है कि वो शख्स सड़क हादसे का शिकार हो गया, तो किसी को चोट आई है, तो किसी का दर्दनाक मौत हो गया। ऐसी खबरें सुनकर डर सा लगता है कि परिवार का कोई सदस्य बाहर गया हो तो घर पर वापस सही सलामत आ जाए, क्योंकि आज के समय में वाहनों की उपयोगिता कई गुना अधिक बढ़ गई है और साथ ही लापरवाही भी बढ़ गई है। इसलिए सड़क दुर्घटना ना हो इसके लिए सही ट्रैफिक नियमों का पालन करना और उसकी सही जानकारी का पता होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आजकल के जो युवा द्वारा असुरक्षित वाहन चलाने का चलन बढ़ता जा रहा है, इतना ही नहीं, वाहन चलाते समय फ़ोटो क्लिक करना, रील्स वगैरह बनाना, बातें करना, मैसेज करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी वजह खुद को तो हादसे का शिकार होते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी इनकी वजह से हादसों का शिकार बन जाते हैं। मोबाइल के अलावा अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, गाने सुनते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से तो कई दुर्घटनाएं ख़राब ड्राइविंग, सड़क सुरक्षा सावधानियों का पालन ना करने, जागरूकता की कमी और लापरवाही की वजह से हो जाती है। जब भी घर से बाहर निकलिए, अपनी तय गति सीमा में ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि तेज रफ्तार हादसों का शिकार होने का सबसे बड़ा कारण होता है। आजकल तो देखा भी जाता है कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं वो भी गाड़ी काफ़ी स्पीड से चलाते हैं, और अगर आगे कुछ अचानक से आ जाए तो वो अपनी रफ्तार को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, अपनी तो क्षति करते ही हैं, साथ में आसपास के लोगों को भी नुकसान होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चार पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहन, या पैदल ही क्यों ना हो, मादक पदार्थों का सेवन करके कभी भी घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए, ड्राइविंग की तो बात ही दूर है। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि

चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर पहने और दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता वाला ही हेलमेट ज़रूर लगाएं। पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए भी सड़क नियमों का पालन होना चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें और यातायात के संकेतों जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स का भी सख्ती से पालन होना चाहिए। सड़क पर अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने से भी बचें क्योंकि इससे अन्य लोगों का भी ध्यान भटकता है। कम उम्र के बच्चों को भी देखा जाता है कि दो पहिया वाले वाहन को चलाते हुए, ये गलत है क्योंकि एक उम्र सीमा होती है गाड़ी चलाने की, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। सही उम्र में सही समय पर ही चलाना उनके जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है। सखियों, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा का मतलब ही है कि सड़क पर सुरक्षित रहना ही अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। यातायात नियमों का पालन करना किसी औपचारिकता से बढ़कर हमारे और हमारे प्रियजनों की जान बचाने का सबसे सीधा उपाय है। सभी को सोच समझकर अपने विवेक से इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। और इसी के साथ आइए सखियों, सुनते हैं एक और गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम सब ने अक्सर ये कहते सुना है या खुद भी अनुभव किया है सखियों कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं। पानी हमारे जीवन जीने का आधार है। पानी की एक एक बूंद का महत्व है। अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आवश्यकता तो हर मनुष्य को होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक आज भी लाखों परिवारों को पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। इसीलिए इस समस्या को समाप्त करने के लिए और प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने हर घर जल यानी जल जीवन योजना की शुरुआत की। यह मिशन केवल जल आपूर्ति की योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, महिलाओं के श्रम को कम करने और स्वास्थ्य में सुधार लाने की एक अच्छी पहल है। क्योंकि कई जगहों पर पानी के अभाव के कारण महिलाओं को मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से जल उनके घर तक आता है। सही मायने में कहा जाए तो यह योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। सखियों, भारत जो एक विशाल आबादी और अनगिनत विविधताओं वाला देश है, सबके लिए साफ पानी मुहैया कराना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने के साथ साथ एक बड़ी प्राथमिकता भी रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 30,000 लोगों की मौत डायरिया से हुई थी और जिनमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। और डायरिया की वजह से बच्चों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल था। पानी की समस्या की वजह से, गंदगी वाली पानी की वजह से बच्चों में कुपोषण की समस्या भी देखी गई है। और महिलाओं में या पुरुषों में अगर कहा जाए, बुज़ुर्गों में कहा जाए, तो अनगिनत बीमारियों को भी देखा गया है। लेकिन अब बहुत हद तक इस योजना के माध्यम से जल जनित बीमारियों में कमी आई है। हर घर जल का उद्देश्य भी यही है कि जल स्रोतों के विकास, पाइपलाइन नेटवर्क निर्माण, जल गुणवत्ता निगरानी और जल संरक्षण के कार्य

कार्यों को भी बढ़ावा देना होता है। आज ये जानते हुए हमें बहुत खुशी भी होती है कि इस योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को घर बैठे स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सखियों, एक दौर था कि हमें काफ़ी दूर जाकर के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि पानी मिल पाना भी मुश्किल होता था। हमें सही ढंग से पानी का सदुपयोग आज के समय में करना चाहिए क्योंकि आगे चलकर पानी की समस्या और भी अधिक हो सकती है। तो पानी को बचाइए और कल के जीवन को संवारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं का श्रम भी आज कम हुआ है क्योंकि उन्हें दूर दराज जाना नहीं पड़ता था। बच्चों की शिक्षा में भी बढ़ावा हुआ है और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतर हुई है। सखियों, जल ही जीवन है, उसकी एक एक बूंद का महत्व हम सभी को समझने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले भविष्य में

क्योंकि उन्हें दूर दराज जाना नहीं पड़ता था। बच्चों की शिक्षा में भी बढ़ावा हुआ है और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतर हुई है। सखियों, जल ही जीवन है, उसकी एक एक बूंद का महत्व हम सभी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, इंसान पौधे कम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश भी कम हो रही है, जल का संरक्षण कम हो रहा है, तो इस योजना के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। इस योजना का लाभ केवल घरों तक ही नहीं है, बल्कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक संस्थानों पर भी नल से पानी की सुविधा प्रदान की जा रही है। सखियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी दूर दराज जाते हैं, हमें पानी की भी सुविधा नहीं होती है, तो सरकार की ये कोशिश है कि जगह जगह भी पानी की सुविधा कराई जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की असावधानी ना हो। तो सखियों, इस योजना के माध्यम से अगर आपके घर भी नल जल की सुविधा नहीं है, तो आप इस योजना के माध्यम से नल जल की सुविधा भी आप ले सकती हैं, और कोशिश कीजिए कि आपके जो आस पड़ोस हैं उन्हें भी इस सुविधा का लाभ उठाने का मौका ज़रूर प्रदान करवाएं। तो सखियों, इसी के साथ अब अपनी रेडियो सखी चंदा को दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी चंदा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब आइए सुनते हैं एक बेहतरीन लोकगीते भरत सिंह भारती की आवाज़ में।

श्रोताओं, भरत सिंह भारती की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे यह बेहतरीन है भोजपुरी लोकगीत। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के सभे श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के प्रणाम। श्रोता सभे, कार्यक्रम शुरू करे से पहले आई जान ले जाओ आज के अपना कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में। तो देखी आज हमने के शुरुआती चर्चा हुई सुरक्षित भोजन आ बेहतर स्वास्थ्य के बारे में। कहे कि काल सतत पाक कला दिवस रहे तो उस संबंध में हमने के बतियावल गई। कार्यक्रम में आज मन मनसाइन खातिर गीत गौनाई के आनंद लिहल जाई मनोरंजन ओझा से। एकरा अलावा आज के वार्ता में विषय बा चारित्रिक मूल्य के विकास आ वार्ताकार बणन रामाशीष सिंह। श्रोता सभे, एक जानकारी में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन खातिर आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो हमने के संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन

उलन खातिर आज बतकही होई आ अंत में जायजा लिहल जाई मौसम के पूर्वानुमान के। लेकिन पहले आई जान लिहल जाओ सुरक्षित भोजन आ बेहतर स्वास्थ्य के बारे में। देखी भोजन जवन बा वो हमनी के जीवन के आधार है। जैसे एगो वाहन चलावे खातिर कोई भी वाहन हो के चार पहिया हो के दुपहिया हो के या फिर एहू से बड़ा वाहन हो के अच्छा ईंधन के आवश्यकता होला। अक्सर जब हमनी के ओकर सर्विसिंग करावे जाने जा तो ये पता कर लिया कि भाई उमें कौन कंपनी के मोबिल बढ़िया लागी कौन पार्ट्स बढ़िया बा। तो वैसे ही हमनी के शरीर के स्वस्थ आ ऊर्जावान बनावे खातिर सुरक्षित आ पौष्टिक भोजन के आवश्यकता होला। यदि भोजन शुद्ध स्वच्छ आ संतुलित होके तो हमनी के स्वास्थ्य अच्छा रहेला। लेकिन यदि भोजन दूषित या असुरक्षित होके तो ये अनेक बीमारियन के कारण बन जाला। अक्सर लोग कहेला कि भाई पेट में दर्द होता गैस होता अपच होता ये जितना भी चीज बा हमनी के और संतुलित दिनचर्या आ अनियंत्रित भोजन के परिणाम है। आज के समय में खाद्य पदार्थन में मिलावट गंदगी आ अस्वच्छता एगो बड़ चुनौती बन गेल बा। खासकर खुले में बिके वाला खाद्य पदार्थ बासी भोजन दूषित पानी आ अनुचित तरीका से रखल गेल खाद्य पदार्थ कई तरह के बीमारियन के जन्म देला। जैसे दस्त हैजा टाइफाइड फूड पॉइजनिंग आ पेट संबंधी समस्या। ऐसे हमनी के भोजन के गुणवत्ता आ स्वच्छता ये दोनों पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। सुरक्षित भोजन खातिर कुछ महत्वपूर्ण बातन के जानल आ ओकर पालन कइल बहुत जरूरी बा। जैसे भोजन बनावे से पहले आ फिर खाना खाए से पहले हाथ के अच्छा तरह से धोवे के चाहिए। ताजा फल आ सब्जी के साफ पानी से धो के उपयोग करे के चाहिए। एकरा अलावा जौन भोजन बन गेल बा ओकरा के ढाँक के रखे के चाहिए ताकि धूल मक्खी या अन्य कीटन से ओकरा के बचावल जा सके। बासी या खराब भोजन के सेवन कबो ना करे के चाहिए। शुद्ध आ सुरक्षित पेयजल के उपयोग करे के चाहिए काहे कि अगर जल भी दूषित होई तो वो हमने के समस्या उत्पन्न कर सकेला। एकरा अलावा संतुलित आहार लेवे के चाहिए जौना में अनाज बा दाल बड़ी सन फल सब्जी दूध आ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल बा। ऐसे सुरक्षित भोजन खाली हमने के व्यक्तिगत स्वास्थ्य खातिर ही ना बल्कि पूरा समाज के स्वस्थ रखे खातिर बहुत जरूरी बा। स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज आ मजबूत राष्ट्र के निर्माण कर सकेलन। ऐसे हमने के स्वयं भी जागरूक रहे के चाहिए आ दूसरा लोग के भी सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक करे के चाहिए काहे कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ धन है। आय धन के रक्षा सुरक्षित भोजन के माध्यम से ही कई जा सकेला। तो हमने के सब कोई मिल के स्वच्छ सुरक्षित आ पौष्टिक भोजन के अपनावे के निर्णय लेवे के चाहिए आ स्वस्थ जीवन के ओर कदम बढ़ावे के चाहिए। देखिए

ये सब बात कही हमने के आगे भी होत रही। तो आई कार्यक्रम में कुछ मन मनसाइन कर जाओ आ सुनल जाओ मनोरंजन ओझा से एगो लोकगीत आई सुने के।

0: कितना बढ़िया आ सुंदर गीत सुनौलन, सुन के एकदम मन मिजाज हरियर हो गई। ए गीत खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। आ अब आई कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले सुन लिया जाओ कुछ संदेश, तो आई सुने के।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
0: देखी श्रोता सभे, एक बार फिर से स्वागत बा कार्यक्रम में। आई जानल जाओ चारित्रिक मूल्यों के विकास के बारे में, बता रहल बन रामाशीष सिंह, तो आई सुनल जाओ। देखी हमनी के चारित्रिक मूल्यन के विकास के बारे में सुनल जाई। एकरा पहले एगो जानकारी ले लिया जाओ कि संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस काहे मनावल जाला आ एकर उद्देश्य का बा। श्रोता सभे, जैसन कि हमनी के जानत नहीं जा कि विश्व भर में विभिन्न कारण से अभी हमनी के देखते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध चल रहेला, तो युद्ध चलत रहेला यह दौरान बहुत सारा हिंसा के साथ साथ यौन हिंसा भी होला। आ एकरा से हमनी के समाज के खासकर कहीं कि मानवता के खातिर ये बहुत बड़हन ये चुनौती बा। कहे कि अधिकतर जवन लोग बा उ निर्दोष लोग एकर शिकार होलन, यही के चलते हमनी के मनाई ले जा कि भाई उ लोग के ए समस्या से कैसे बचावल जाओ। देखी एकरा के संयुक्त राष्ट्र जवन बा तवन जौन युद्ध सशस्त्र संघर्ष आ हिंसक परिस्थिति में होला वही में अधिकतर लोग यौन हिंसा के शिकार होला। ई दिवस हमनी के याद दिवावेला कि यौन हिंसा खाली कोनो व्यक्ति पर हमला नहीं खे, बल्कि ओकर गरिमा सम्मान आ मानवाधिकार पर भी गंभीर आघात बा। युद्ध आ संघर्ष के समय महिला बच्चा आ कई बार पुरुष लोग के भी यह अमानवीय अपराध के सामना करे के पड़ेला। एकर दुष्परिणाम खाली शारीरिक ही नहीं खे, बल्कि मानसिक सामाजिक आ आर्थिक रूप से भी लंबा समय तक बनल रहेला। तो ये हम कहत रहे कि संयुक्त राष्ट्र यह गंभीर समस्या के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ावे आ पीड़ित लोग के न्याय दिलावे के उद्देश्य से 19 जून के ई अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कैलस। एकर मुख्य उद्देश्य संघर्ष के क्षेत्र में यौन हिंसा के रोकना, पीड़ित लोग के सहायता प्रदान करना आ अपराधियन के दंडित करना बा। हमनी के सब कोई के ई दायित्व बा कि हमनी के मानवाधिकारन के रक्षा करी जा, महिला आ बच्चा के सुरक्षा सुनिश्चित करी जा, ताकि कोनो भी प्रकार के हिंसा के खिलाफ

आवाज़ उठावल जाओ। समाज में समानता आ संवेदनशीलता के भावना विकसित करके ही हमने के इस समस्या के स्थायी निदान निकाल सकने जाए। तो ये अवसर पर हमने के ये संकल्प लेवे के चाहिए कि हमने के कोनो भी प्रकार के यौन हिंसा के स्वीकार ना कइल जाए, पीड़ितन के साथ खड़ा रहल जाए आ एगो ऐसन समाज के निर्माण में योगदान दिहल जाए जहाँ हर आदमी सुरक्षित सम्मानित आ स्वतंत्र जीवन जी सके। तो हमने के आई जैसन की बात भइल है कि चारित्रिक मूल्यन के विकास में सुनल जाए वार्ता राम आशीष सिंह के, तो आई सुनल जाओ। देखी कुछ कारण से हमने के अभी ये वार्ता नहीं जा सुन सकत, लेकिन आई जा चारित्रिक मूल्य के विकास पर हमने के बतिया लिहल जाओ। काहे कि कोनो भी व्यक्ति के वास्तविक मूल्यांकन खाली ओकरा शैक्षणिक उपलब्धि धन संपत्ति या पद से ना होला, बल्कि ओकरा चरित्र नैतिकता व्यवहार आ सामाजिक उत्तरदायित्व से होला। चरित्र ही जवन बा उ मनुष्य के सबसे बड़ पूंजी है। ऐसे कोनो भी समाज आ राष्ट्र के विकास खातिर हमने के चारित्रिक मूल्यन के विकास बहुत जरूरी बा। चारित्रिक मूल्य के अर्थ होला आदमी के सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता आ नैतिक आचरण के आकलन करना। वर्तमान समय में ज्ञान आ तकनीक के तेजी से विस्तार तो हो रहल बा, लेकिन अगर ओकरा साथ नैतिक मूल्यन के विकास ना होई तो समाज में अनेक समस्या उत्पन्न हो सकेला। श्रोता सभे, चरित्र निर्माण के शुरुआत परिवार से होला। माता पिता बच्चन के अच्छा संस्कार देके उनका व्यक्तित्व के मजबूत नींव रखेलन। विद्यालय भी ए दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। कहें कि शिक्षा के जौन उद्देश्य बा वो खाली रोजगार प्राप्त कइल नइखे, बल्कि एगो अच्छा आ जिम्मेदार नागरिक बनावल भी बा। चारित्रिक मूल्यांकन के विकास खातिर हमने के अपना जीवन में सत्य, ईमानदारी, अनुशासन आ मानवता जैसन गुण के अपनावे के होई। समाज में आदर्श व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लेवे के चाही आ आपन व्यवहार से दूसरा खातिर उदाहरण प्रस्तुत करे के चाही। लोग कहे कि हाँ भाई देख उनकर व्यवहार, उनकर विचार, उनकर रहन सहन ऐसन बा जवन की प्रेरक बा। आज के युग में सोशल मीडिया आ आधुनिक तकनीक के प्रभाव बढ़ रहल बा, तो ऐसन समय में युवा लोग के सही आ गलत के बीच अंतर समझे आ अपना नैतिक मूल्य के बनौले रखे के आवश्यकता बा। चरित्रवान व्यक्ति खाली अपने सफल होला ऐसन बात नहीं, बल्कि समाज आ राष्ट्र के उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान देवेला। कहें कि

शिक्षा, ज्ञान आ सफलता तबे सार्थक बा जब उनकर चरित्र उत्तम होखे। तो हमने के अपना चरित्र, उच्च नैतिक मूल्य आ आदर्श व्यवहार रखे के चाही। एकरा के अपना जीवन के आधार बना के एगो बेहतर समाज के निर्माण करे के चाही। तो ऐसे हमने के जरूर यह पर विचार करे के चाही। एक बात और बा, यह सब के अलावा आज हमने के समाज के सबसे गंभीर समस्या में से एगो बा नशा। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आ अन्य मादक पदार्थ के सेवन से खाली व्यक्ति के स्वास्थ्य के नुकसान ना पहुँचे, बल्कि ओकर परिवार, समाज आ राष्ट्र के विकास भी प्रभावित होला। हमने के देखले बनी जा, हमने के चरित्र के गिरावट में नशा के बहुत बड़ा योगदान बा। आ नशा के शुरुआत अक्सर शौक, मित्रन के दबाव या तनाव से बचे खातिर लोग अपना लेला, लेकिन धीरे धीरे ये आदत इस तरीक़ा से लत में बदल जाला कि छोड़ले ना छूटे। एकरा कारण व्यक्ति के शारीरिक आ मानसिक क्षमता कमजोर होखे लगेला। अनेक गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, लीवर के बीमारी आ मानसिक विकार नशा के कारण उत्पन्न हो सकेला। ऐसे अगर आपन चरित्र बढ़िया करे के बा तो नशा से दूर रहे के चाही। नशा व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को भी खराब करेला। परिवार के मेहनत के कमाई नशा में खर्च हो जाला, जौना से घर में तनाव, कलह आ गरीबी बढ़ेला। तो कई बार तो नशा के लत अपराध आ हिंसा के भी जन्म देवेला। युवा वर्ग कौनो भी राष्ट्र के शक्ति होलन। यदि युवा नशा के गिरफ्त में आ गेलन तो देश के भविष्य कमजोर हो जाई। ऐसे युवा लोग के खेल, शिक्षा, योग, व्यायाम आ सकारात्मक गतिविधियन के तरफ प्रेरित कर आवश्यक होला। नशा मुक्ति खाली सरकार के जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमने के सबकर ही कर्तव्य बा। परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्था आ स्वयं ये सब मिल के बुराई के समाप्त कर सकेलन। हमने के नशा के दुष्परिणाम के बारे में लोगन के जागरूक करे के चाही और नशा छोड़े वाला लोग के उत्साहवर्धन करे के चाही। तो आई हमने के आज इहो संकल्प ले लिया जाओ कि स्वयं तो नशा से दूर रहबे के लिए, दूसरा लोग के भी एकरा दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर जाए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन आ नशा मुक्त समाज ही एगो चरित्रवान समाज के निर्माण कर सकेला। तो ऐसे हमने के चारित्रिक मूल्यन के विकास खातिर एकरों से भी मुंह मोड़े के चाहिए। आई अब मौसम के पूर्वानुमान आ कुछ कृषि सलाह भी जान लिया जाओ। तो श्रोता सभे, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि यानी 21 जून के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा कहीं या आंधी कहीं चले, हल्का से मध्यम वर्षा होखे के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहे के संभावना बा। एकरा अलावा कुछ सलाह भी बा कि आगामी दिन में वर्षा के संभावना के देखते हुए जवन खड़ी फसल बाड़ी सन

होने की सिंचाई टाले के प्रयास करी आ खाद कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी। एकरा अलावा धान के खेती खातिर जैसे लंबा अवधि वाला धान के जौन किस्म बा सबौर सबौर श्री स्वर्णा सब एक राजश्री राजेंद्र मंसूरी राजेंद्र श्वेता स्वर्णा VPT 5204 आ राजेंद्र कस्तूरी ये सबन के नर्सरी स्थापित करी। स्वस्थ पौधा खातिर नर्सरी में सड़ल गोबर के खाद के व्यवहार करी। नर्सरी में क्यारी के जौन चौड़ाई बा 1.25 से 1.5 मीटर आ लंबाई अपना सुविधा अनुसार रखे के चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान के रोपाई खातिर 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नर्सरी तैयार करे के चाहिए। बीज के व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करी। बीज गिरावे से पहले बीजोपचार जरूर कर लेवे के चाहिए। एकरा अलावे जौन किसान भाई बहन लोग खरीफ मक्का के बुआई कर चाहतन तो वो बुआई करस खेत के जोताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी। आ बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन 60 किलो स्फुर आ 50 किलो पोटास के व्यवहार करी। अनुशंसित मक्का के किस्म जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 वगैरह बा। प्याज के खेती खातिर नर्सरी जौन बा उ बीजस्थली के तैयारी करी। तो स्वस्थ पौधा खातिर नर्सरी में गोबर के खाद अवश्य डाली। खरीफ प्याज खातिर N53 एग्रीफाउंट डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर किस्म अनुशंसित बा। प्याज के बीज के व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करी और बीज गिरावे से पहले बीजोपचार कर ली। तो श्रोता सभी हमने के कार्यक्रम के आज के समय और आ गए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हो चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम है सांझ गीत। सांझ गीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से। आवाज़ है उदित नारायण की, श्याम देहाती के शब्द हैं और संगीत है राजेश रजनीश के।

श्रोताओं, सांसगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था श्याम देहाती ने और संगीत दिया था राजेश रजनीश ने, और हमने इसे लिया था फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से। कार्यक्रम का अगला गीत है, आइए सुनते हैं सर्वेश मिश्रा और सुचिता व्यास की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आपन भइल पराया। शब्द हैं MD प्यासा के और संगीत है संतोष सुमन के।

श्रोताओं, सर्वेश मिश्रा और सुचिता व्यास की आवाज़ों में अभी आपने सुना यह भोजपुरी गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म आपल भई पराया से। एमडी प्याशा के शब्द थे और संगीत दिया था संतोष सुमन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है कईम और चंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आवत हुई हैं सांवरियाँ। लिखा है उमाकांत तिवारी ने और संगीत दिया है दिलीप दत्ता ने।

यह खूबसूरत भोजपुरी गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था कयूम और चंद्राणी मुखर्जी ने। फिल्म का नाम था आवत हुई सांवरिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। सांझ गीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और पामेला जैन की आवाज़ों में। अरविंद तिवारी के शब्द हैं, संगीत दिया है अमन श्लोक ने और फिल्म का नाम है रेजा।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए उदित नारायण और नीरा जोशी की आवाज़ों में संतोष पुरी के शब्द हैं, संगीत धनंजय मिश्रा के हैं और फिल्म का नाम है औरत खिलौना नहीं।

0: सांस्कृतिक कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म कुर्बानी से। कुमार सानू और ऐनी की आवाज़ है, शब्द है सावन के और संगीत है लाल सिन्हा का।
1: अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम?

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सांझ गीते प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। अब आइए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले आइए हम एक नज़र डालते हैं रोहतास और कैमूर जिले की आज की स्थानीय गतिविधियों पर। श्रोताओं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, यह नई योजना भीबी जी राम जी पूरे देश के साथ साथ कैमूर जिले में भी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यह नई योजना वर्तमान संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना को प्रतिस्थापित करेगा। जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस पर जोर देना, रोजगार पैदा करना और पंचायतों को सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देने में सक्षम बनाना है। सैचुरेशन बेस्ड प्लानिंग, कन्वर्जेंस और पूरे तथा संपूर्ण सरकार ग्रामीण विकास ढांचे को जोड़ते हुए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार का वैधानिक गारंटी दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों का आय सुलभ एवं सुदृढ़ होगी। इसके 4 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं, जैसे जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमी घटनाओं से निपटने हेतु कार्य। राज्य सरकारें बुआई एवं कटाई के चरम मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष कुल 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी करेगी।

जिनके दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं कराए जाएंगे। केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40 का होगा, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 90 और 10 का होगा। केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर राज्यवार मानक आवंटन तय करेगी। अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। श्रोताओं, जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में कई विभाग से संबंधित 29 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार आज अब तक जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 24 अधिकारियों ने 49 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया। जिले के कुल 11 प्रखंडों में 37 अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां 62 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। थानों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों में 10 अधिकारियों ने 35 नागरिकों के साथ संवाद किया। सबसे व्यापक प्रभाव पंचायत स्तर पर देखा गया, जहां 54 अधिकारियों ने कुल 96 नागरिकों से सीधा संपर्क किया। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक ले जाना है। श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कैमूर जिले की आज के स्थानीय गतिविधियों पर। श्रोताओं, गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं एक बेहतरीन गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी के शब्द हैं। आर डी वर्मन ने इस गीत को संगीत से सजाया है और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है आज का गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण। अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की पॉलिसी और फैसलों ने पूरे देश में लगातार नए रोजगार के मौके बनाए हैं। श्री मोदी नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है।
1: साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर जाता है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित

0: हुई हैं।
1: हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज छपरा से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में बिहार को बुलेट ट्रेन परियोजना का भी लाभ मिलेगा।
2: बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। आज साथियों, जो दिल्ली की ये गाड़ी रवाना हो रही है, ये बहुत लंबे समय से मांग थी। इससे छपरा से बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, ये सारे के सारे एक सूत्र में बन जाएंगे और आने वाले समय में पूरे छपरा के निवासियों को बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी।
0: इधर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिले के मढ़ौड़ा स्थित लोकोमोटिव प्लांट में तैयार 51वें रेल इंजन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना किया। मढ़ौड़ा से रवाना किया गया यह इंजन पहले मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, वहां से समुद्री मार्ग के जरिए इसे गिनी भेजा जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत बना यह इंजन भारी माल ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से बिहार को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टियर 2 टियर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बिहार टेक पोर्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को अगले 5 वर्षों में उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पटना के राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर कर रही है तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रभावी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना के चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 AC लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यह जिगजैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की यह परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की

0: दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में 10 अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति दी है। श्री जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। पटना सिटी की भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिलाषा सिन्हा पर दाखिल खारिज अपील वाद के निष्पादन के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की अनुशंसा की गई है। वहीं हाजीपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी मुकुल कुमार झा, किशनगंज सदर के अंचलाधिकारी राहुल कुमार तथा पश्चिम चंपारण के बगहा एक की अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कार्य में लापरवाही के आरोप में शिवहर जिले के तरियानी थानाध्यक्ष विनय कुमार को निलंबित कर दिया है। इधर सुपौल के पुलिस अधीक्षक ने प्रतापगंज थाना के मालखाना से प्रतिबंधित कप सिरप को अवैध रूप से बेचने के आरोप में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं चौकीदार राहुल कुमार सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MVR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्टर पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। दरभंगा में 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा चलाई जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली मोड़ बस पड़ाव और दरभंगा रेलवे स्टेशन से विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक निर्धारित मार्गों पर चलेंगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्योग विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग 1

0: या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
1: इधर विभाग ने बांका, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में अगले दो घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित राजकीय एकीकृत मध्य विद्यालय डहरक ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त किया है। देश भर के लगभग 14,75,000 विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 191 विद्यालयों का चयन राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप्स और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण, अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: और इस गीत के बाद

This is All India Radio, the news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
4: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मरौड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री का निरीक्षण किया तथा अफ्रीका देश के गिनी के लिए निर्यात होने वाले

0: 91 रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर छपरा आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस तथा दोहड़ी घाट औढ़ीहार मेमू के विस्तृत परिचालन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में रेल बुनियादी ढांचा विस्तार और सोनपुर रेल मंडल के विकास को लेकर भी चर्चा हुई।
1: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: संभावित बाढ़ और नदी कटाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने मकेर के हौजलपुर तथा तरैया क्षेत्र के कटाव निरोधी और तटबंध निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को सभी कार्य 30 जून तक पूरा करने तथा गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिए। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां पर कल तक रोक लगा दी है। यह आदेश सरकारी, निजी, संविदा प्राप्त विद्यालयों, कोचिंग संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। बीते दिन सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग स्थित कालीरात्रि मंदिर परिसर में जिला स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती, वॉर्म कंपोस्ट, जीवामृत तथा प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जिला में इन दिनों ऑनलाइन नशा मुक्ति शपथ अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रखंड के लोगों ने नशा से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खेल विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा और वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि रखने वाले 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिनों सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड स्थित पपौर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच योजनाओं का लाभ वितरित किया तथा सहयोग सह जन कल्याण शिविर का उद्घाटन कर लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।
1: मुख्यमंत्री का आदेश है, किसी विभाग का कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, यदि उसने 30 दिन में आप बिहार की जनता का काम नहीं किया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम हमारी सरकार करती है। साथ
3: सिवान नगर परिषद क्षेत्र में यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। अगले 6 माह के लिए इस रोक को बढ़ाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। इधर जिले में व्यापारिक संगठनों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने का फैसला किया है। इस व्यवस्था से व्यापारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने के साथ साथ शहर में यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। दूसरी ओर महिला बाल विकास निगम की ओर से जिले में विभिन्न प्रखंडों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला परिवहन विकास और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग सहित यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने तथा लाभार्थियों तक सुविधाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या तथा मध्याह्न भोजन योजना की नियमित निगरानी की जा रही है।
2: अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
4: प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल अभी आप

वे सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए पेश है ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। श्रोताओं, कार्यक्रम का आज का यह सफ़र यानी गीतों का यह खूबसूरत सफ़र तय करेंगे आप अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ है। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी सुखी व सानंद होंगे। तो श्रोताओं, इस माहौल को और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं आप सबों की पसंद पर बेहतरीन फिल्मी गाने। सबसे पहले श्रोताओं, हमने लिया है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म साजन का यह गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं। चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न कुमार और प्रीतम कुमार, गढ़मुक्तेश्वर काकाठेर की मड़ैया से राजकुमार जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी, नगर निगम वार्ड नंबर 28 से नाज मंजिल मेहसौल, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस उर्फ डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, समीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमन नसरीन, आसमा परी, रबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। तो आप सबों की फरमाइश पर लीजिए पेशे कार्यक्रम का यह पहला गीत जिसे आप लोगों ने पसंद किया है। फिल्म का नाम है साजन।

श्रोताओं, ई मनपसंद कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म में साजन से हमने लिया था। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें थीं, शब्द थे समीर के और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म बीबी नंबर वन का यह गाना, जिसे गाया है अभिजीत कुमार और अनुराधा पौंडवाल ने। देव कोहली ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का। पसंद करने वाले आप सभी हैं गोकुल चौक के गंग जला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

श्रोताओं, अभी कार्यक्रम में आपने सुना फिल्म बीबी नंबर वन का यह गीत जिसे गाया था अभिजीत कुमार और अनुराधा पौंडवाल ने, लिखा था देव कोहली ने और संगीत निर्देशन था अनु मलिक का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने अपने श्रोताओं के पसंद से लिया है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुहेरकर, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी। अब जो हम गीत सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान, लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत निर्देशन है रवि का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना आदमी और इंसान फिल्म का यह बेहतरीन गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। शाहिर के शब्द थे और संगीत दिया था रवि ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म रक्षक का यह गीत, जिसे गाया है SP बालासुब्रमण्यम ने। समीर दीपक चौधरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनवद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकम खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोंड और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। आकाशी सासाराम से निसार, कमाल, मेराज, सकीबा, आलिया और इब्राहिम भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। हमें ईमेल करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं की शिकायत रहती है कि उनके गीतों को हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रोताओं के गीतों को हम अपने इस कार्यक्रम यानी कि ई मनपसंद में शामिल करें। यदि इस एपिसोड में आपके गीत शामिल न किए गए हों तो अगले एपिसोड में आपके गीत अवश्य शामिल किए जाएंगे। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म रक्षक का यह खूबसूरत गीत। आवाज़ SP बालासुब्रमण्यम की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म रक्षक का यह बेहतरीन गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज़।

फिल्म चलते चलते का यह गीत है। इसे लिखा है बाबू मान ने और संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार सुरलकर। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना। फिल्म चलते चलते का यह गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म शालीमार से। आवाज़ हैं किशोर कुमार की, आनंद बख्शी साहब के शब्द हैं और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, पसंद करता है। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार कुंवर, परमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुधीर रमेश शाहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े।

श्रोता, ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों के कार्यक्रम ये मनपसंद में अभी आपने सुना शालीमार फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी साहब के शब्द थे और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फिल्म लैला मजनू का यह गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिर के शब्द हैं और संगीत से सजाया है मदन मोहन और जयदेव ने। पसंद करने वाले आप सब हैं ग्राम SDO मार्केट नोखा से मोतीमाला चंदन कुमार, कमलेश कुमार, कृष्णा सुदामा और मनोज कुमार गुप्ता, कुवात बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर।

तो श्रोताओं, यह है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। इसी गीत के साथ है आज के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। ई मनपसंद कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आप सबों की फरमाइशी गीतों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम। ई मनपसंद प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोता, हमारी स्टूडियो की घड़ी में अब थोड़ी देर में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके

0: परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों

0: देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई

क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़

0: कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद भोजपुरी लोकगीतों का और कार्यक्रम है लोकधारा। पहला भोजपुरी लोकगीत है, आइए सुनते हैं अनुपमा शरण की आवाज़ में।

श्रोताओं, धरणीधर शुक्ला और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना यह भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम का अगला और आखिरी भोजपुरी लोकगीत। लीजिए सुनिए भरत सिंह भारती की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम बंदगी।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का बंदगी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on major outcomes and strategic gains from Russia's
1: हम और आप हर समय हर युग को जी नहीं सकते, ये संभव ही नहीं, परंतु हम अपने इतिहास को अवश्य जानना चाहते हैं और उस इतिहास को जानने के लिए हम उसे संजोते हैं। जिस माध्यम से हम एक विशेष कालखंड की जानकारी ग्रहण करते हैं वही तो साहित्य है। साहित्य अपने समय की हर व्यवस्था को वर्णित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष समय में कैसी थी इसकी जानकारी हमें प्रदान करता है, और इतना ही नहीं, यह हमारे वर्तमान में हमारी सहायता भी करता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो भूतकाल की घटनाओं की पुनरावृत्ति करवाती हैं, और उस समय की रचनाओं को पढ़कर यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि उस समय की समस्याओं को किस तरीके से संभाला गया था। इसलिए साहित्य को मात्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि आप मनोरंजन कर सके, भावनात्मक जागरूकता बढ़ा सके, अपितु इसलिए भी पढ़ना चाहिए ताकि आप अपना और दूसरों का भी इतिहास जान सके और अपना भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कर सके। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं अब संपादकीय की ओर। श्रोताओं, हिंदी साहित्य आज इस स्थान पर है, वहां पर उसे पहुंचाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और यह सत्य है। हम शायद ही कल्पना कर सके कि जब चारों दिशा में अंग्रेजी का वर्चस्व हो, वैसे में अपनी भाषा को जीवित रख पाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में कई ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी और अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। किसी ने कविता कहानी के माध्यम से, तो किसी ने निबंध और उपन्यास के माध्यम से इस ज्ञान ज्योति को निरंतर जलाए रखा। आज हम एक ऐसे साहित्यकार की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को साहित्य की भाषा का स्थान दिलाया। एक साहित्यकार में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं उनमें समाहित थी। हम बात कर रहे हैं हिंदी निबंध के जनक और हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह माधव राव सप्रे की। 18 जून 1871 को बालघाट मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो वे वकील थे, परंतु हृदय में मात्र एक साहित्यकार जीवित रहता था। जब माधव जी साहित्यिक संसार में अपने पग बढ़ाना चाह रहे थे, उस समय उनकी चुनौती अंग्रेजी भाषा से अधिक उर्दू फारसी से थी। ऐसे समय की भाषाई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने हिंदी को आम भाषा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे एक किसान भी बोल सकता है, श्रमिक भी बोल सकता है, और एक बुद्धिजीवी वर्ग भी। अपने ठेठ देसी रूप से उन्होंने हिंदी को जीवित रखा और उसे जन जन तक पहुंचाया। उनका एक ही नारा था, जैसी बोली वैसी लिखनी। वे लिखते समय वैसे हो जाते जैसा वो सोचते। वे अपनी भाषा को सुंदर बनाने के प्रयास में उसके अपनत्व को अलंकृत करने के प्रयास में नहीं जुटते।

0: मात्र साहित्यकार नहीं थे, वे पत्रकार भी थे। 1900 में उन्होंने हिंदी केसरी अखबार निकाला नागपुर से। ये तिलक के केसरी का हिंदी संस्करण था। उन्होंने निबंध संग्रह लिखे, उपन्यास लिखे, बाल साहित्य भी लिखे। उनकी लेखनी की विशेषताओं की यदि बात करें तो वे सरल भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए वे आम जन तक पहुंचे। वे व्यंग्य को भी इतनी रोचकता से प्रस्तुत करते कि समाज भी स्वयं को सुधारने के प्रयास में लग जाता। मुहावरे लोकोक्ति को उन्होंने सुंदरता से सजाया। आज भी यदि हम उनकी रचनाओं को पढ़ ले तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्रोताओं, संपादकीय के बाद समय है जरा सोचिएगा। आपने ये लोकोक्ति अवश्य सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है अल्पज्ञानी सदैव अधिक दिखावा करता है। इस लोकोक्ति को हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग किया है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ज्ञान बहुत कम होता है, परंतु वे दिखावा के लिए अपने ज्ञान का प्रचार इस तरह करते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई होगा ही नहीं। वे अनावश्यक अपने ज्ञान की जानकारी देते हैं बिना ये सोचे कि उससे अधिक ज्ञान भी किसी के पास हो सकता है। श्रोताओं, ज्ञान की कोई सीमा तय नहीं कर सकता। ये तो वो अनंत सागर है जिसमें आप जब गोते लगाएं आपको कुछ नया ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए इसका दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान तो बस अर्जित की जाती है, उसे अर्जित कीजिए और सही समय पर उसका प्रयोग कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अधजल गगरी कोई नहीं कहेगा। श्रोताओं, जरा सोचिए के बाद समय है साहित्यिक रचनाओं के आनंद लेने का। सर्वप्रथम भारतेंदु कुमार सिंह अपनी कविताओं से बेटी के दर्द को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सुनते हैं भारतेंदु कुमार सिंह से उनकी कुछ कविताएं।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है बेटी। चलो माना, हाँ चलो माना, पराया धन होती हैं। चलो माना, हाँ चलो माना, पराया धन होती हैं। पलती बाबुल के घर पति का आंगन होती हैं। दुनिया के रश्मों रिवाज की खातिर बेटियाँ नैहर के रूह में ससुराल का मन होती हैं। पिता की जान कूल का मान होती हैं। पिता की जान कूल का मान होती हैं। उजाले दो घरों में एक साथ करें वो रोशन दान होती हैं। जीवन से भरे रिश्तों का हसीन दर होती हैं। जीवन से भरे रिश्तों का हसीन दर होती हैं। कांटों से भरी दुनिया में फूलों का घर होती हैं। जन्मती जिस कूल में वो कूल धन्य होता है। जन्मती जिस कूल में वो कूल धन्य होता है। मार दी जाती कोख में खुदा भी सुन के रोता है। जला दी जाती बेटियां आग में दहेज की। जला दी जाती बेटियां आग में दहेज की। फेर के मुंह आदमी शासन प्रशासन सोता है। फेर के मुंह आदमी शासन प्रशासन सोता है। मार के बेटी तुम बेटे कहाँ से लाओगे। मार के बेटी तुम बेटे कहाँ से लाओगे। बेटियों की कोख में पूरी सृष्टि पाओगे। बिन बहन सूनी कलाई बिन माई है स्नेह कहाँ। बिन बहन सूनी कलाई बिन माई है स्नेह कहाँ। बिन बेटी महबूब किधर और इश्क कहाँ से लाओगे। बिन बेटी महबूब किधर और इश्क कहाँ से लाओगे। बेटे और बेटियों की परवरिश अलग है क्यों। बेटे और बेटियों की परवरिश अलग है क्यों। बेटे गरकुल दीपक बेटियां कलंक हैं क्यों। आखिर क्या फ़र्क है दोनों। आखिर क्या फ़र्क है दोनों। रूह में इंसान की एक को जन्नत नसीब दूजे को न रखे क्यों। एक को जन्नत नसीब दूजे को न रखे क्यों। नन्ही सी जान को तुम लिंग भेद बताते हो। नन्ही सी जान को तुम लिंग भेद बताते हो। कुचल के लाखों ख्वाहिशें पंख तोड़ जाते हो। नन्ही सी जान को तुम लिंग भेद बताते हो। कुचल के लाखों ख्वाहिशें पंख तोड़ जाते हो। कैद करते जिस्म को रवाजों की जंजीर से। कैद करते जिस्म को रवाजों की जंजीर से। रूह को तड़पता देख खुद भी बिफर जाते हो। रूह को तड़पता देख बिफर जाते हो। किया है क्या गुनाह। किया है क्या गुनाह जो ये जिंदगी से दूर हैं। किया है क्या गुनाह जो ये जिंदगी से दूर हैं। जिस्म रूह सही सलामत फिर भी ये मजबूर हैं। तुम्हारी गंदी सोच और मानसिक बीमारी से। तुम्हारी गंदी सोच और मानसिक बीमारी से घुट रही है जिंदगी फिर भी इन्हें मंजूर है।

लूट रही है जिंदगी, फिर भी इन्हें मंजूर है। पहले इन्हें कोख में माँ के लड़ना है, पहले इन्हें कोख में माँ के लड़ना है, ले लिया जन्म घर फिर दुनिया से डरना है। पहले इन्हें कोख में माँ के लड़ना है, ले लिया जन्म घर फिर दुनिया से डरना है। तय करेगा ये जहाँ चाल तेरे कदमों की, तय करेगा ये जहाँ चाल तेरे कदमों की, कर्ज उम्र भर बेटी होने का भरना है, कर्ज उम्र भर बेटी होने का भरना है। गिद्ध सा जिस्मों को नोच के जब खाते हो, गिद्ध सा जिस्मों को नोच के जब खाते हो, क्रूरता से इन पे एसिड उछाल आते हो, कांपती है रूह मन, कांपती है रूह मन और आत्मा सिहर जाए, जाने कितने निर्भया हर रोज़ तुम बनाते हो, जाने कितने निर्भया हर रोज़ तुम बनाते हो। कब तलक ये बेटियाँ जुर्म सहेंगी, कब तलक ये बेटियाँ जुर्म सहेंगी, लूटती सी सकती और जलती रहेंगी, कब तलक ये बेटियाँ जुर्म सहेंगी, लूटती सी सकती और जलती रहेंगी, बनी है जंग जिंदगी हर मोड़ पे इनकी, मोम की सी आग में पिघलती रहेंगी। आग बने बेटी ले दुर्गा का अवतार, आग बने बेटी ले दुर्गा का अवतार, एक हाथ में मेहंदी हो दूजे में कटार, दया का दरिया जुल्म से ज्वालामुखी बने, दया का दरिया जुल्म से ज्वालामुखी बने, काली बन करती रहे दुशासन का संहार, काली बन करती रहे दुशासन का संहार। इनके लिए बने हैं सारे कायदे कानून, इनके लिए बने हैं सारे कायदे कानून, लगा के इन पे बंदिशें मिलता तुम्हें सुकून, इनके लिए बने हैं सारे कायदे कानून, लगा के इन पे बंदिशें मिलता तुम्हें सुकून, करके देखो दुनिया कभी इनके हवाले, करके देखो दुनिया कभी इनके हवाले, रख लेंगी सर पे संसार दिख जाएगा जुनून, रख लेंगी सर पे संसार दिख जाएगा जुनून। इनका भी तो हक है हर सुनहरी शाम पे, इनका भी तो हक है हर सुनहरी शाम पे, चहकता होगा दिल भी इनका हर खुशी के जाम पे, इनका भी तो हक है हर सुनहरी शाम पे, चहकता होगा दिल भी इनका हर खुशी के जाम पे, धड़कने इनकी भी मेरे तुम्हारे जैसी हैं, जीने दो इन्हें जिंदगी उस खुदा के नाम पे, जीने दो इन्हें जिंदगी उस खुदा के नाम पे। ख्वाहिशें इनकी भी वैसे ही मचलती हैं, ख्वाहिशें इनकी भी वैसे ही मचलती हैं, कुछ कर गुजरने की आग इनमें भी जलती हैं, ख्वाहिशें इनकी भी वैसे ही मचलती हैं, कुछ कर गुजरने की आग इनमें भी जलती हैं, वश चले तो बेटियों का चांद पे ठिकाना हो, वश चले तो बेटियों का चांद पे ठिकाना हो, पर क्या करें ये बेटियाँ कुंठित समाज में पलती हैं। सौंदर्य की ये देवी ममता का है भंडार, सौंदर्य की ये देवी ममता का है भंडार, रूप का सागर है प्रबंध का व्यापार, सौंदर्य की ये देवी ममता का है भंडार, रूप का सागर है प्रबंध का व्यापार, खुदा ने रूह बख्शी और दे दिया जन्म, बेटी को ऐसे पालो जैसे आई हो बहार, बेटी को ऐसे पालो जैसे आई हो बहार। लक्ष्मी सा इनको रखो दो सरस्वती का ज्ञान, लक्ष्मी सा इनको रखो दो सरस्वती का ज्ञान, बरसेगी घर में खुशियाँ छिड़केंगी तुम पे जान, सब कर्मों की देवी ये बेटियाँ ही हैं, सब कर्मों की देवी ये बेटियाँ ही हैं, जीवन की हैं संगीनी प्रश्नों का है निदान, जीवन की हैं संगीनी प्रश्नों का है निदान। होती है ये नरम जैसे फूल हो गुलाब, होती है ये नरम जैसे फूल हो गुलाब, शीतलता इनके भीतर खिलता हुआ महताब, इन्हें गरज है प्यार स्नेह दरिया दिली की, इन्हें गरज है प्यार स्नेह दरिया दिली की, कोमल सिमूरत बेटी ममता का है किताब, कोमल सिमूरत बेटी ममता का है किताब। निर्मल से निश्चल हृदय बस प्यार मिलेगा, निर्मल सा निश्चल हृदय बस प्यार मिलेगा, हर रिश्ता एक कलीसा हर दिन खिलेगा, है इल्म जादुई बस ये बेटियों के पास, है इल्म जादुई बस ये बेटियों के पास, रिवाज हो या रिश्ता बखूबी निभेगा, रिवाज हो या रिश्ता बखूबी निभेगा। जब लगा था संकट मुसीबत थी बड़ी, जब लगा था संकट मुसीबत थी बड़ी, कदम जमाए पहले बेटी ही थी खड़ी, जब लगा था संकट मुसीबत थी बड़ी, कदम जमाए पहले बेटी ही थी खड़ी, गम हो या

0: खुशियां सब साथ है परिवार, जोड़ के रखे रिश्ते ऐसी है ये कड़ी, जोड़ के रखे रिश्ते ऐसी है ये कड़ी। नन्ही सी परी ने जब पापा कहा था, नन्ही सी परी ने जब पापा कहा था, सच बताना आँख से आंसू न बहा था, सच बताना आँख से आंसू न बहा था। आज भी जब घर से होती है ये रुखसत, होता है न वो दर्द जो विदा करके सहा था, होता है न वो दर्द जो विदा करके सहा था। बेटी नहीं किसी के उपभोग का सामान, बेटी नहीं किसी के उपभोग का सामान, माँ बाप की है गुड़िया अपने बच्चों का जहान। बेटी नहीं किसी के उपभोग का सामान, माँ बाप की है गुड़िया अपने बच्चों का जहान। खाएं कसम हम आज से समाज बनाएं, मिल जाए हर बिटिया को उसके हक का सम्मान, मिल जाए हर बिटिया को उसके हक का सम्मान। ताजी हवा में खुल के ये सांस ले सके, ताजी हवा में खुल के ये सांस ले सके, हौसलों की पंख को उड़ान दे सके। जोह ना पड़े न किसी की बाट को, जोह ना पड़े न किसी की बाट को, हर समस्या का खुद ही समाधान दे सके। बेटी से ही कल था, बेटी से ही कल है, बेटी से ही कल था, बेटी से ही कल है, विपत्ति के पल में बेटी से ही बल है। बेटी से ही कल था, बेटी से ही कल है, विपत्ति के पल में बेटी से ही बल है। सुन लो इल्तिजा ये मांग समय की, सामाजिक पतन का बेटी से ही हल है, सामाजिक पतन का बेटी से ही हल है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ। तेरी खिलखिलाती धूप का मैं हिस्सा हूँ, तेरी खिलखिलाती धूप का मैं हिस्सा हूँ, हर अनकहे जज्बात का मैं किस्सा हूँ। संजोए ख्वाब हैं तुमने जो लाखों जहन में, संजोए ख्वाब हैं तुमने जो लाखों जहन में, बिछाए ख्वाब वो चादर मैं मखमली सा हूँ, बिछाए ख्वाब वो चादर मैं मखमली सा हूँ। नहाया रंग में गुलों के बेमिसाल होके, नहाया रंग में गुलों के बेमिसाल होके, इत्र सा छिड़का है हर रोज़ बदन पे ख्यालों के, छू के शबनम को मोती तूने उस रात किया, छू के शबनम को मोती तूने उस रात किया। महक वो इत्र की मोती मैं रंग गुलों का हूँ, महक वो इत्र की मोती मैं रंग गुलों का हूँ। शहर की किरणें आती वो तेरे रोशनदान से, शहर की किरणें आती वो तेरे रोशनदान से, पीली शहद जो चखती है तू जुबान से, खातिर जिस पवन के तुम खोलती कपाट, खातिर जिस पवन के तुम खोलती कपाट। वो किरण वो पवन शहद में पीली सा हूँ, वो किरण वो पवन शहद में पीली सा हूँ। हर दफ़ा पढ़ा नमाजों में अजान बना के, आयत की तरह याद किया कुरान बना के, मस्जिद से पाक दिल में काफिर को दी पनाह, मस्जिद से पाक दिल में काफिर को दी पनाह। वो काफिर वो कुरान और अजान ही मैं हूँ, वो काफिर वो कुरान और अजान ही मैं हूँ।
1: भारतेंदु सिंह की कविताएं अभी हम सुन रहे थे। बेटी के दर्द को उन्होंने बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया। इन कविताओं के बाद आइए अब सुनते हैं बदलते समय का साहित्य विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं राम कुमार निराला।
2: हिंदी साहित्य के लगभग 1100 वर्षों के इतिहास में भारतीय समाज ने कई रंग बदले। यह बदलाव भावनाओं, विचारों, रहन सहन के स्तर, लोक व्यवहार, सामाजिक बनावट और सोच के स्तर के साथ ही साथ बदलते राजनीतिक ढांचे, भौतिक विकास और वैश्विक आदान प्रदान के कारण हुआ। यह बदलते सामाजिक मूल्यों जैसे नारी सशक्तिकरण, शहरी जीवन की विडंबनाओं और तकनीकी प्रभाव को व्यक्त करता है, जो लेखकों को पुराने विषयों पर पुनर्विचार करने और नए विषय चुनने के लिए प्रेरित करता है। इस विषय में साहित्य का माध्यम जैसे खड़ी बोली का प्रभाव और ई साहित्य का उदय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल सिद्धनाथ संप्रदाय के संतों की रचनाओं से आरंभ होकर वीरगाथा काल के गलियारों से गुजरते हुए जैन मुनियों की

रचनाओं की परंपरा का स्पर्श किया। अमीर खुसरो और मैथिल कोकिल विद्यापति की रचनाएं भी इस काल के हैं। इन कवियों के समय का समाज इनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित है। इसी प्रकार भक्ति काल की लगभग 400 वर्षों की लंबी परंपरा का काल भी उल्लेखनीय था। इस युग के साहित्य को कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, रैदास के अलावा अन्य संतों ने प्रमुखता से प्रभावित किया। इन संतों ने मूलतः स्वांतः सुखाय, लोकोपकारी, लोकरंजक और लोकरक्षक साहित्य का निर्माण किया। इनकी रचनाओं में भी समकालीन समाज का स्पष्ट चित्रण मिलता है। रीतिकाल की दो प्रमुख धाराओं रीतिबद्ध और रीतिमुक्त हैं। रीतिबद्ध राजाश्रित कवियों की रचनाएं हैं और रीतिमुक्त स्वतंत्र कवियों की रचनाएं। कुछ भिन्नताओं के बावजूद इनकी रचनाओं में भी समाज का स्वरूप बड़ा ही स्पष्ट है। 19वीं शताब्दी के आधुनिक काल भी लगभग 200 वर्षों का इतिहास उपनिवेशवाद का था। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ने समाज को प्रभावित किया, लेकिन अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासनकाल ने भारतीयता को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे हिंदी साहित्य का स्वरूप में भी अपेक्षित बदलाव हुआ। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया है, क्योंकि इस काल में कविताएं गौण हो गई हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल से लेकर रीति काल के लगभग 750 वर्षों के इतिहास काव्य प्रधान ही रहा था। इस अवधि में अतुलनीय रचनाएं हुई। परिवर्तन ही युग का नियम है। समय समय पर सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य भी बदलते समय का साक्षी है, यानी साहित्य समाज का दर्पण होता है और समय के साथ समाज, संस्कृति और विचारधारा में होने वाले बदलावों को साहित्य ने हमेशा प्रतिबिंबित किया है। बदलते समय का साहित्य हेतु कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य हैं। आधुनिक तकनीक के विकास ने साहित्य का नया स्वरूप प्रदान किया है। आज के व्यस्तम जीवन में लोग छपी हुई पुस्तकों के अलावा ई रीडर्स जैसे किंडल पर पुस्तकों का पढ़ना, यात्रा करते समय ऑडियो बुक्स सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। साहित्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव अत्यधिक है। अब ऐसी डिजिटल रचनाएं भी उपलब्ध हैं, जहाँ पाठक कहानी के कथानक को स्वयं चयन कर बदल सकते हैं, जो पारंपरिक रैखिक कथाओं से अलग है। साहित्य में विमर्शों की बहुलता है। स्त्री विमर्श समकालीन साहित्य का प्रमुख अंग है। महिलाओं की आकांक्षाएं, उनके अधिकार और पितृसत्तात्मक समाज की चुनौतियों को साहित्य में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। साहित्य में नारी के बदलते स्वरूप, उसकी जागरूकता और संघर्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब वह केवल संस्कारों में बंधी नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रियंबदा, ममता कलिया, अलका सरावगी, मधु कंकड़िया आदि लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री विमर्श को मुकम्मल रूप प्रदान किया। महादेवी की पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। मैत्रीय पुष्पा, तब्दील निगाहें, चित्रा मुद्गल, आवा, कृष्णा सौबती, ए लड़की, मनु भंडारी, आपका बंटी, मृदुला गर्ग आदि रचनाकार स्त्री विमर्श को धार दे रही हैं। कृति चौधरी, कात्यायनी, सविता सिंह आदि कवित्री अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्री विमर्श को आगे बढ़ा रही हैं। कृति चौधरी तीसरे सप्तक की महत्वपूर्ण कवित्री है। सीमा रेखा उनकी कविता की पंक्तियां श्रोतव्य है। मृग तो नहीं था कहीं, बावले भरते से इंगित पर चले गए, तुम भी नहीं थे, बस केवल यह रेखा थी। कवित्री कात्यायनी की कविता सात भाइयों के बीच चंपा का एक टुकड़ा द्रष्टव्य है। सात भाइयों के बीच चंपा से आनी हुई, बांस की टहनी से लेचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती, सात भाइयों के बीच चंपा से आनी हुई। सविता सिंह की कविता मैं किसकी औरत हूँ की पंक्तियां ध्यातव्य है। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। दलित विमर्श भी आज साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा है। दलित

लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश कर्दम, तुलसीराम, असंग घोष आदि उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। सुनो ब्राह्मण कविता कवि मलखान सिंह की है। सुनो ब्राह्मण, हमारी दास्ता का सफर तुम्हारे जन्म से शुरू होता है और इसका अंत भी तुम्हारे अंत के साथ होगा। बदलते समय के साथ संवाद करती जयप्रकाश कर्दम की कविताएं दुनिया के बाजार में शीर्षक काव्य संग्रह में भारतीय बाजार के विभिन्न आयामों को सामने तो लाते ही हैं, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को भी जगजाहिर करते हैं। उनकी संवेदना देश और समाज के उस व्यक्ति के लिए व्यक्त होती है जो कंक्रीट के ताजमहलों को देख भौचक है। अपने समर्पण में कवि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और मानवता के बचाए रखने की बात करते हैं। दुनिया के बाजार में खड़े उस व्यक्ति को जो न क्रेता है, न विक्रेता है, न उत्पाद है, केवल भौचक, सहमा और लाचार है। जयप्रकाश कर्दम अपनी कविता में इंसानियत, प्यार और अदब को महत्व देते हुए यथार्थ स्थिति को ही स्पष्ट किया है। लगे थे सब के सब छीन झपट कर पाने हथियाने में, पा लिया था सबने कुछ न कुछ, जिसको जो हाथ लगा, जहाँ तक जिसकी पहुँच बनी, किसी ने धन पाया, किसी ने पद प्रतिष्ठा, किसी ने सत्ता के सुख, छीनने हथियाने की इस आपाधापी लूट खसोट और गलाकाट प्रतियोगिता के घमासान में प्रेम और इंसानियत को अस्थायी महत्व देते हुए आगे वे लिखते हैं। नहीं बचा था उनके लिए कुछ भी शेष पाने या हथियाने को, लेकिन बचा रह गया था इस सबके बीच बेकद्र और गैर जरूरी सा थोड़ा सा अदब, थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा प्यार। नहीं था इस सबका खरीदार दुनिया के बाजार में। नाटक सदियों से सशक्त प्रतिरोध का माध्यम रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्धर्षा सर्वाधिक चर्चित नाटक है। भीष्म साहनी के कबीरा खड़ा बाजार में और हानिश नाटक उल्लेखनीय है। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल और जावेद अख्तर खां के नाटक दूर देश की कथा पाठकों के बीच चर्चित है। बदलता समय साहित्य और कहानी को कई तरह से प्रभावित करता है, जिसमें तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलाव जैसे वैश्वीकरण और एकल परिवार शामिल हैं। कहानी कहने के तरीके में अब अधिक विविधता है, जो पारंपरिक साहित्य से लेकर माइक्रो फिक्शन तक फैला हुआ है। यह अक्सर सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करता है। पटना के सर्वाधिक चर्चित कथाकार रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी प्रमाण पत्र बदलते समय के संदर्भों को गंभीरता से रेखांकित करती है। यह कथा परिवार में प्रवेश कर गए संप्रदायवाद को तो बेपर्दा करती ही है, अवसर पड़ने पर वह कैसे इसी की आड़ में आगे बढ़ने का रास्ता भी बना लिया है, यह भी खुलता है। पटना की अन्य कथाकारों में ऋषिकेश सुलभ की कहानी बसंत के हत्यारे, अरुण प्रकाश, भैया एक्सप्रेस, अवधेश प्रीत, निरसंस, प्रेम कुमार मन्नी 1984 आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं पठनीय हैं। बदलते समय का साहित्य और युवा वर्ग के बीच का संबंध गहरा और गतिशील है। युवा वर्ग न केवल बदलते समय के साहित्य का सबसे बड़ा पाठक है, बल्कि वह स्वयं भी इस साहित्य को नई दिशा और विषय वस्तु प्रदान कर रहा है। आज का युवा वर्ग आदर्शवादी प्रेम कहानियों या पुरानी धार्मिक गथाओं में दिलचस्पी नहीं रखता। वह साहित्य में अपने जीवन के संघर्षों, करियर की चिंता, रिलेशनशिप की जटिलताएं, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबावों को देखना चाहता है। साथ ही युवा वर्ग कविता लिखना और पाठकों को सुनाना पसंद करते हैं। युवा वर्ग साहित्य में पलायनवाद नहीं बल्कि कठोर यथार्थवाद की तलाश करता है। वे ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करती हैं। युवा वर्ग संस्कृतनिष्ठ या क्लिष्ट हिंदी की जगह सहज, सरल और बोलचाल वाली भाषा को पसंद करता है, जिसमें कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण भी होता है। बदलते समय का इतिहास इस भाषाई परिवर्तन को अपना रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचा जा सके। बदलते समय का साहित्य और युवा वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। कुल मिलाकर बदलते समय का साहित्य अधिक समावेशी, तकनीक

0: रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से जागरूक हो गया है। यह नूतन विचारों को सिर्फ जन्म ही नहीं दे रहा है बल्कि पल्वित और पुष्पित भी कर रहा है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञानवर्धन का भी माध्यम है। निश्चित रूप से यह एक सामाजिक हस्तक्षेप है जो समाज को दिशा देने की ओर लोकोन्मुखी भावना से ओतप्रोत होकर अग्रसर है, अर्थात बदलता साहित्य मनुष्य को अधिक मानवीय और दयालु बनाता है, जीवन की समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और सुधी पाठकों के बीच संवाद को सुगम बनाता है।
1: श्रोताओं, अभी हम राम कुमार निराला से वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था बदलते समय का साहित्य। इस वार्ता के साथ ही अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं, जाने से पहले एक निवेदन कि यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aipatna@gmail.com। तो श्रोताओं,

0: वार्ता का विषय था बदलते समय का साहित्य। इस वार्ता के साथ ही अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं जाने से पहले एक निवेदन कि यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@gmail.com। तो श्रोताओं, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए पेश है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित गानों का कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम शाम से ही दिल। गाया है सुमन शेखर ने, इम्तियाज़ वफा के शब्द हैं और संगीत दिया है इम्तियाज़ वफा ने।

शाम से ही दिल। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस एल्बम का यह गीत सुना जिसे गाया था सुमन शेखर ने। रसरंग कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ में सुनते हैं यह खूबसूरत एल्बम गाना। एल्बम का नाम है बरसात हो जाए। रश्मि विराग के शब्द हैं और संगीत दिया है पायल देव ने।

जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में अभी आपने सुना बरसात हो जाए एल्बम का यह खूबसूरत एल्बम गाना, जिसे शब्दों में पिरोया था रश्मि विराग ने और संगीत दिया था पायल देव ने। रसरंग कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना श्रोताओं आइए सुनते हैं, मंजिल ए म्यूजिकल जर्नी एल्बम से आवाज़ें रक्षा श्रीवास्तव की है, हैदर नाजमी के शब्द हैं और संगीत दिया है राजीव महावीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना यह एल्बम गाना जी से गाया था रक्षा श्रीवास्तव ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। रसरंग कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एल्बम मद मस्त नैना का यह एल्बम गाना। गाया है अखिलेश कुमार ने, गीत और संगीत हैं अखिलेश कुमार के।

अब रसरंग कार्यक्रम का आखिरी एल्बम गाना एल्बम वो लड़की याद आती है से गाया है आलोक कुमार ने, अशोक कुमार दीप के शब्द हैं और संगीत दिया है अशोक कुमार दीप ने।

तो श्रोताओं, इसी एल्बम सॉन्ग के साथ है एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब वक्त हो चला है सदाबहार हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम चित्रपट तराने का। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं चित्रपट तराने की इसे खूबसूरत गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी साहब के शब्द हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीत से सजाया है और फिल्म का नाम है आप आएं बाहर आएं।

चित्रपट तराने कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना आप आए बाहर आए फिल्म का यह बेहतरीन गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी साहब के शब्द थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दो बदन। शकील बदायूनी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन हैं रवि के।

कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना दो बदन फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था आशा भोसले ने। शकील बदायूनी के शब्द थे और संगीत निर्देशन था रफ़ी का। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यह बेहतरीन गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दों में पिरोया है और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन के।

छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म कन्यादान का यह खूबसूरत गीत है, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द थे हसरत जयपुरी के और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म दोस्ती से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, सुधीर कुमार, सुशील कुमार और फरीदा के शब्द हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

तो श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए दोस्ती फिल्म के इसी गीत के साथ है सदाबहार हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस से, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 8:20 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। सुबह 9:00 आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक के माधुरी। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल और विविध भारती की गीतमाला हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम यू वाणी। 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से। 7:50 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फ़ोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हैलो मनपसंद। 7:50 पर 8:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। अब आइए कल के मौसम के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल यानी 20 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत तथा दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का भी अनुमान है। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल के मौसम पर। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में यानी कि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा

0: बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ाने

अभी आप हिंदी और अंग्रेजी में सुन रहे थे समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। आवाज़ की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।